नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 12 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार, अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:55 पर।

जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

असुर संहारा सुयश कुमार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर दीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्ण प्रतिज्ञा तसु पुरारी दानिन मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत स

राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, हमारे अगले प्रोग्राम की प्रति

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी

0: आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप अपने रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz पर सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती श्वेता शाह से की गई बातचीत। आपकी बातचीत का विषय है योग, मानसिक स्वास्थ्य व पोषण विधि। बातचीत करेंगे आज के मेहमान से भारत सोपोरी। नमस्कार सभी श्रोताओं का आज के स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है जो हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वस्थ का मतलब बस बीमार नहीं होना नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं का सम्मिलित होता है जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं। स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम के श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अंबाला के योग एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग कोच श्रीमती श्वेता शाह जी, जो 22 साल का अनुभव रखते हैं योग, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण विधि में। स्वागत अभिनंदन मैडम श्वेता शाह जी आज के कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता स्टूडियो में।
2: मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मंच दिया। आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ, चाहे वो इसमें से मेरी एक ही बात पकड़ पाए, फायदा हो पाए। यही मेरी आज इच्छा है यहाँ पर आने से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का साक्षात्कार। आपसे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे योग, मानसिक स्वास्थ्य व पोषण के बारे में। पहले आपसे जानना चाहेंगे योग का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर कितना है, इसके समय और क्रियाएं क्या है जो हम सबके लिए लाभदायक हैं।
2: योग बेसिकली अगर हम शाब्दिक रूप से भी देखें, योग का अर्थ है जोड़ना, यूनियन। तो हम इस बात को जरा ध्यान से समझें कि जब हमारा मानसिक शारीरिक समन्वय होता है, हम उसको जोड़ पाते हैं, हम उसके साथ बराबर मिलकर एक समान होकर के काम कर पाते हैं, जी पाते हैं, सही मायने में हम उसे ही योग कहते हैं
1: जी।
2: और इसको हम कर सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं, और एक साधारण भाषा में या एक साधारण अर्थ में हम समझें तो लोग समझते हैं ये एक आसन है, ये एक क्रिया है। उससे बहुत ज़्यादा है, वो एक शुरुआत है जिससे आप अपने देह को तैयार करते हैं, उसको शारीरिक रूप से गठिला बनाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि आप आगे आने वाली बाकी सारी जो हमारी शास्त्रों के द्वारा दी गई स्पिरिचुअल जर्नी है, उन मेडिटेशंस को, उस ध्यान की अवस्था को, राजयोग को प्राप्त कर सके। तो ये जो है एक बहुत ही इलैबोरेट वर्ड है, इसमें कोई अंत ही नहीं है। तो हम इसको अगर लें कि बेसिक शब्दों में कि हमें अगर आसन का समय चाहिए तो बिल्कुल मान करके चलें कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको कुछ ना कुछ आपने खाया हुआ नहीं होना चाहिए, मिनिमम।
1: यानी कि खाली पेट ही योग करना चाहिए।
2: बिल्कुल, उसमें कुछ आसन है जो अपवाद की तरह है, जो डाइजेशन के लिए ही अच्छे हैं, जैसे वज्रासन है,
1: ठीक है,
2: कुछ उनको छोड़ दिया जाए जो आपको करना ही खाना खाने के बाद ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा व्हाट वी एक्सपेक्ट, और हमारे जो पुराने शास्त्र हैं देखा जाए तो योग पतंजलि से जहां से आया है वो ये कहता है, जो अब साइंस भी प्रूफ कर रही है कि एकादशी का जो व्रत है वो जापानीज ने पूरा रिसर्च करके बता दिया है कि हाँ उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं नियर अबाउट आफ्टर 30 आवर्स, 30 घंटों के बाद अगर आप प्रॉपर फास्टिंग करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी बॉडी में रीजनरेशन के दोबारा से बनने वाले स्टेम सेल्स जो आपकी बॉडी को रिवाइव करते हैं, और बड़ा ही ल्यूक्रेटिव वर्ड है, बड़ा ही ऐसा शब्द है जो सबको बड़ा प्यारा लगता है, एंटी एजिंग, वो वाला जो काम है ना वो तब शुरू होता है। तो ये मान करके चलें कि इन आसनों को, इन क्रियाओं को करने के लिए अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए भोजन तो बिल्कुल नहीं चाहिए।
1: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार करना है और इन क्रियाओं को करने से जो स्वास्थ्य लाभ उनको मिलेगा उसके लिए वो अपने आप को तैयार कैसे करें जो पहली बार करने वाले हैं।
2: हाँ, तो इस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीम बनी हुई है कि जब तक हम कुछ खाते नहीं है तो दिमाग नहीं चलता है, खा लेते हैं तो नींद आ जाती है।
1: ठीक है,
2: तो इस बात से हमें समझ में आता है कि हर चीज को मॉडरेशन में करें, बैलेंस होकर के करें, उतना करें जितना रिक्वायर्ड है। खाने की जगह हमारी उतनी ही है। कोई भी इंसान अगर अपनी मुट्ठी को बांध ले तो हमारे पेट का साइज बस उतना ही होता है, और उसके ऊपर हम जितना खाते हैं तो वो पेट फैलता जाता है। और फिर आजकल इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, पेट को जी काटा जा रहा है, उसे छोटा किया जा रहा है, रीसाइज किया जा रहा है। हमारी कैपेसिटी सिर्फ एक मुट्ठी ही है, और बिल्कुल मान करके चलें जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद जो मिक्सी चलाई जाती है अगर उसमें गुंजाइश ही ना हो, आपके जो बाइल जूसेस हैं, आपके पेनक्रियास का काम है, लिवर का काम है, हर दूसरा पेशेंट हम सुनते हैं लिवर कैंसर हो गया है, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले तो खान पान सबसे प्राइम चीज है कि कितना खाया जाए और क्या खाया जाए। कुछ एक या दो चीजें, जैसे इंसोमेनिया बहुत पॉपुलर है, नींद ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन की भी, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में मैग्नीशियम का कमी होना
1: जी।
2: तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हर चीज खाइए लेकिन बैलेंस तरीके से खाइए। और दूसरी चीज, रात को जो हमारा पहला गुरुकुल सिस्टम था, संध्या समय बाद ना खाएं, कम खाएं। और अगर उसके लिए आपको मोटिवेट करना चाहूं तो एक बात कहूंगी कि जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो 7 बजे के बाद कुछ खाते नहीं है। उसका कारण यही है कि जैसे जैसे सूर्य जो आपके शरीर में जठराग्नि बन करके आपके नाभि चक्र में बैठता है
1: जी,
2: उसका कार्य जो है वो क्षीण और बिल्कुल कम होता चला जाता है। तो वो आप इतना सक्षम ही नहीं होता है कि आप जितना उसमें डाल रहे हैं कि वो उसे पूरी तरह से पचा पाए। तो रात का जो खाना है, या तो ना, या कम, या 7 बजे के बाद नहीं, ये होना चाहिए। कभी खा लिया, आप शादी में गए, सोसाइटी में रहते हैं, वो एक अलग बात है। कोशिश करें ऐसे रखेंगे तो फिर वो बैलेंस्ड जितना अमाउंट है बॉडी ले लेगी।
1: श्वेता जी, जो आपने शुरुआत करी इस कार्यक्रम की, आपने जो भी कहा वो हमारे धर्म शास्त्रों के साथ जुड़ा है, खास करके योग। जो सरल भाषा में हम योग समझते हैं, मुझे ये समझ आ गया कि सिर्फ योग एक क्रिया करना नहीं है, योग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें क्रिया के साथ साथ अपने आहार का संतुलन और समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए, और जो आपकी बातें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये श्रोताओं को किसी न किसी तरीके से फायदा करे। श्वेता जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कौन सा योग आसन है जो तनाव को कम करता है?
2: मुझे लगता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को। अगर हम बात करें मानसिक, जो इंसान का इस समय करंट मेंटल स्टेटस है
1: जी,
2: वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड है। उसकी जो बैलेंसिंग है, जो शब्द हम बार बार बात कर रहे हैं योग, वो सही स्थान पर नहीं है
1: जी।
2: उसका कारण है क्योंकि हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी गैजेट्स में रह रहे हैं। अगर हम अपने आसपास देखें, हमारे पास नेटवर्क टावर्स हैं
1: जी,
2: आपका जो खाना है वो आपके बहुत ही कॉमनेस्ट चीजें हैं, एयर फ्रायर्स में बन रहे हैं, माइक्रोवेव में बन रहे हैं
1: जी।
2: कभी हमने इस चीज को सोचा ही नहीं है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म कैसे होता है। वो कहीं और से हीट नहीं लाता है, उस खाने की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको डिसहार्मनी में रखता है पहले, वो उसको आपस में टकराता है, उससे जो हीट जनरेट होती है उससे खाना गर्म होता है। तो मतलब ये माने कि किसी दुश्मन को भी हमें उसे गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ है ही नहीं, वो आपको डिसऑर्डर ही देगा। वो हमारे पुरानी कहावतें हैं ना, हम जैसा खाते हैं, जैसा खाया है वैसा ही हमारा तन बनेगा, वैसा ही हमारा मन बनेगा
1: जी।
2: तो अगर हमारा जो खान पान का तरीका है, ये सब चीजें हैं, उनकी वजह से जो हमारा जो मेंटल बैलेंस, जो हमारा मानसिक स्थिति को होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है, और चाहकर भी नहीं हो पाएगा जब तक हम उसको कंट्रोल ना करें, रेगुलेट ना करें। हर 2 मिनट बाद फोन उठा करके चाहे रील्स देने की इच्छा है, या हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसकी कितनी प्राइस देने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपनी शांति को कुछ देर की मोमेंट्री प्लेजर के लिए छोड़ सकते हैं, तो हम उसको उतनी देर के लिए कंटिन्यू करें, नहीं तो उसको वहीं थोड़ा रेगुलराइज करें।
1: तो क्या नहीं है ऐसा कि जो बहुत पहला समय था जहां पर ये गैजेट्स हमारे पास नहीं होते थे और तब हम समय से अपना काम भी करते थे और समय से खान पान भी करते थे और सोते भी थे, तो क्या इन चीजों का दुष्प्रभाव हमारी जीवन में बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में?
2: बहुत ज्यादा। आप ये देखिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अभी पीछे सचिन तेंदुलकर का भी एक आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने बताया कि वो शायद साउथ में किसी जगह रिजॉर्ट है जहां पर पुराने तरीके से रहने के लिए उनको एक हफ्ते का स्टे दिया गया, जिसमें पूरा सस्टेनेबल हाउस है, उसमें सब कुछ जैसा पहले, फ्रिज भी जो मिट्टी के फ्रिज नीचे जिसमें सामान रख सकते थे, सस्टेन कर सकते थे, इको फ्रेंडली जिसको हमने अब नया टर्म दिया है, वैसे वाले घर, पुराने, उस तरह से वो रहने की प्रोविजन को इंजॉय करते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर आपको मिल कहाँ रही है। रिसर्चर्स बता रही हैं, दिल्ली में जब हम बार बार बात करते हैं कि लंग फिजिशियंस अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आज से 25 साल पहले जब हम ऑपरेट करते थे तो लंग्स का कलर होता था पिंक, गुलाबी। अब हम जब भी करते हैं तो लंग्स निकलते हैं ब्लैक, ब्लैकिश टोन में। इट्स अ जर्नल ट्रेंड, ये नहीं है कि एक या दो,
1: चाहे वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हैं तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से है। और बात यहां पर आती है कि हम उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी चॉइस है। हम डिस्कम्फर्ट लेना नहीं चाहते, तो वो प्राइस कौन पे कर रहा है? हम ही पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो चीजें हमें बेनिफिट के लिए मिली हैं, क्या हम उसको सही सुचारू रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? वो डिस्क्रिशन, वो जो सही डिसीजन लेने की पावर है ना, वो हम विल पावर लेस होने की वजह से लूज कर गए हैं। कहीं ना कहीं हमें फिर से स्ट्रांग होकर विल पावर दिखानी चाहिए कि जितनी जरूरत है उतना ही उस चीज का इस्तेमाल किया जाए।
1: एक योग एक्सपर्ट और मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट होने के नाते जो आपने बात बताई, इसको हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, हम यहाँ अंबाला की बात करेंगे, अंबाला के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम किस तरीके का प्रचार करें, आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, ताकि इन चीजों को वो समझे, जितना भी वो उन चीजों का इस्तेमाल कम कर सके उतना उनके जीवन के लिए फायदा होगा, प्लीज।
2: हाँ, कुछ चीजें हैं जो बहुत आसान है बट हम उस तरफ सोच नहीं पाते हैं। जैसे अपनी बॉडी को एक जर्नल डिटॉक्स दीजिए, मतलब हफ्ते में जो आप एक बार फास्ट रखिए, उस फास्ट को ऐसे वाला फास्ट नहीं कि एक घंटे बाद आपने फ्रूट चाट खा ली, एक घंटे बाद साबुदाने की टिक्की खा ली, एक घंटे बाद हमने आटे, कुट्टू के आटे वाली रोटी खा ली, वो फास्ट नहीं है, वो उपवास नहीं है। अगर आप सही मायने में डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उस डिटॉक्स के लिए आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना पड़ेगा। उसके सिस्टम्स में बहुत सारा जो 24/7 वो आपके लिए काम कर रहा है उसको शट डाउन करना पड़ेगा, कि आप जो हाइपरनेस में घूम रहे हैं, ओवर एक्टिव हैं, उसको थोड़ा आप ठंडा करिए, अपनी जठराग्नि को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत लॉयल है, वो इमीडिएटली अपनी ही बॉडी में अपने रिपेयर वर्क को स्टार्ट करती है। जब रिपेयर वर्क को स्टार्ट करती है तो उसको आपकी अंग्रेजी शब्दों में कहा जाए या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो दे कॉल इट ऑटोग्राफी, मतलब आपका अपने ही शरीर को खाना, यानी जो वेस्ट टॉक्सिन्स, उन सबको भी बड़ी इजीली वो एनगल्फ करता है, जल्दी जल्दी कंज्यूम करता है। तो हमें हफ्ते में एक बार तो अपने आप को तसल्ली से डिटॉक्स करना बनता है। वो हो सकता है खान पान से, वो हो सकता है सोने से, वो हो सकता है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। जो आपके शरीर की प्राण शक्ति चलती है वो ब्रीदिंग है। बहुत लोगों में बड़ा मिथ है कि हम जिम जाते हैं इसलिए हमारा वेट कंट्रोल होता है। अगर हमने कभी ध्यान से 7th-8th में साइंस पढ़ी हो तो हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि जो बॉडी में ऑक्सीजन है वो कंबशन करती है, जलाती है आपके फैट को
1: जी।
2: तो जब हम ब्रीदिंग फास्ट करें, चाहे वो एक जगह बैठ करके भी करें, तो आप तो अपने कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। इट इज नॉट जिमिंग, इट इज द टोन ऑफ योर ब्रेथ विच इज बर्निंग, जो आपके कैलोरीज को बर्न कर रही है। तो आपको चूज करना है, हर चीज चॉइस पर है, आप किधर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये आप सोचें, आप समझें, तब आपको पता चलेगा कि हमारे लिए वो हफ्ते का एक दिन हमारे अपने शरीर के लिए। वैसे तो हम किसी को 10 रुपीज की भी चीज ऐसे नहीं देते हैं बिना मतलब के
1: जी।
2: तो जब अगर हम अपने शरीर के लिए जागरूक नहीं है, जागृति नहीं है कि क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या हम उतना पैसा कमा करके भी खुश हैं, नहीं है ना, तो उसका कारण है क्योंकि आपके शरीर में हार्मनी नहीं है। उस हार्मनी को रीस्टोर करेंगे तो शायद कम चीजों में भी आप मुस्कुराते दिखेंगे,
1: संतुष्टि मिल सकती है।
2: मजदूर सबसे ज्यादा खिलखिलाता दिखाई देता है।
1: मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, जब हम सैर के लिए जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, समय नहीं है, पर फिर भी हम अगर एक घंटा निकाल लेते हैं सैर के लिए और हम 3 या 4 या 5 किलोमीटर चल लेते हैं और उसके बाद आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो क्या वो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का चलना, क्या वो हमारी सेहत के लिए किसी हद तक फायदेमंद है? क्योंकि जब हम आज, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट वॉचेस भी है तो वो आपको बता देती है कि आपने 400 कैलोरीज को बर्न किया, तो क्या वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है?
2: स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आपका व्यक्तिगत प्रश्न है तो डिजिटल वॉचेस भी आपकी एनर्जी खा रही है
1: जी,
2: एथरिकली तो वो भी आपको कंज्यूम कर रही है रादर देन कि आप उसे एज अ कमोडिटी कंज्यूम करें
1: जी,
2: तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए।
1: ओके,
2: दूसरी चीज, अगर हमें शारीरिक रूप से सिर्फ सिर में दर्द है
1: जी,
2: तो हम क्यों चाहेंगे कि हम पैरासिटामोल खाएं और फिर वो लीवर पर भी इफेक्ट करे
1: जी।
2: तो ये हमें थोड़ा सा खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम उसे एक घंटे में ही 15 मिनट ब्रीदिंग कर सकते हैं, ऐसे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपका वेट लूज भी कर सकती हैं, आपको डिटॉक्स भी कर सकती हैं, आपको काम भी कर सकती हैं, यानी आप पहले से और शांत हो जाएंगे,
1: ठीक,
2: आप में ठहराव आना शुरू हो सकता है। दूसरा, उसी में से हम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा निकाल करके अपने लिए एक डिटॉक्स जूस बना सकते हैं, वो भी एक डबल काम करेगा। अगर आप एक घंटा सैक्रिफाइस करने को तैयार ही हैं, तो जुडिशियसली उसको इस तरीके से प्लान करें कि वो 15-15-20-20 मिनट मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं जो बेस्ट तरीके से मेरे शरीर को, स्वास्थ्य को अचीव करने में हेल्प कर सके।
1: ये हमें कौन समझा सकता है, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमारा मकसद आज के इस कार्यक्रम का यही है कि हम भी समझें और हमारी श्रोता भी समझें और हम अंबाला को एक स्वस्थ होने की एक दिशा दे सकें।
2: बिल्कुल यही कहूंगी, देखिए जिंदगी बहुत तेज है, शायद सबके पास इतना समय भी नहीं है कि वो खुद इस चीज को पढ़ें, रिसर्च करें, समझें। हाँ, आपका ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बढ़िया तरीका है, ऐसे ही कुछ और टॉक्स आपके प्लेटफॉर्म से या कहीं और कभी भी आपको लगता है आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा अपना इंटरेस्ट, वही बात है कि कौन सी रील चलानी है आपको
1: जी,
2: आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज ओवर द इयर्स आपकी बॉडी को बेनिफिट करेगी। और हमारे बुजुर्ग हमें बहुत अच्छा बताते थे, अगर हम अपने बुजुर्गों के घर में सुने तो शायद ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य होगा हमारा। अगर हम एक बड़ा छोटा सा भी एग्जांपल ले, अगर पुराने जमाने में और अभी भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, बासड़े बनाए जाते हैं, पुराना खाना खाया जाता है, उसका कारण क्या है? अगर जो चपाती होती है वो जब पड़ी रहती है तो वो पुरानी होते ही, बासी होते ही उसमें B12 बढ़ जाता है, तो जिनकी एड़ियां गलती हैं या डिटॉक्स नहीं हुआ है, पेस्टिसाइड शरीर में ज्यादा है तो पैरों के दर्दों को बहुत आराम रहता है उससे। तो ऐसे ये सारी जो चीजें हैं बड़ी साइंटिफिक थी, अगर हम उन रिचुअल्स पे भी मुझे लगता है काफी हद तक स्विच बैक करें तो हमें फिर भी बहुत सारी चीजों का फायदा हो सकता है जो हम करना नहीं चाहते। अब
1: बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है श्वेता जी, और हम श्रोताओं के लिए एक डाइवर्शन लेते हैं। श्वेता जी, क्या आप संगीत को भी हमारे स्वस्थ जीवन का एक हिस्सा मानते हैं? अगर हाँ तो कौन सा ऐसा आपका मनपसंद गीत है जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाएं?
2: मैं ये चीज को मानती हूं कि अगर हमारे पास समय है तो कुछ समय हमें कुछ संगीत को भी सुनने के लिए देना चाहिए, क्योंकि एक शब्द है म्यूजिक थेरेपी
1: जी,
2: और फ्रीक्वेंसी, ये बड़ा ही इलैबोरेट टॉपिक है, मैं इस पर क्या बात करूं कि आपके हर ऑर्गन की भी एक फ्रीक्वेंसी है।
1: अच्छा,
2: और आपके शरीर की भी एक फ्रीक्वेंसी है, आप हार्ट बीट लेते हैं ना,
1: ECG
2: लेते हैं ना, तो इसी तरह से बाकी सबकी भी है, और साइंस ने तो प्रूव कर दिया है कि प्लांट्स के लीव्स तक में ये फ्रीक्वेंसी है, उनका भी म्यूजिक बजता है। तो जब आप अच्छी फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं, पॉजिटिव सॉन्ग्स को सुनते हैं, और ये बड़ा फैशन है, जितना ज्यादा आप लोगों से पूछेंगे ना उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा अब आप ही के प्लेटफॉर्म से बोलूंगी फूके हुए गाने होते हैं ना, दुखी वाले, वही पसंद आते हैं। तो ये मान करके चलें, फिर बात आती है चॉइस। अच्छे गाने सुने, लाइट हार्टेड गाने सुने जो मन को भी अच्छे लगे, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा फील कराए,
1: खुशी भी दे सके।
2: बिल्कुल। अगर आपको लगता है अगर आप स्पिरिचुअली ज्यादा नहीं ग्रो कर रहे हैं या आप एथिस्ट हैं तो भी आपके लिए ये इतनी म्यूजिक थेरेपी काफी है, नहीं तो आपके पास बहुत मंत्रोच्चारण है वो लगाइए शाम को।
1: तो कौन सा गाना हम ले सकते हैं?
2: ऐ जिंदगी गले लगा ले, एक प्यारा सा गाना है।
1: श्रोताओं ये चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं श्वेता जी का ये मनपसंद गीत।

0: सभी श्रोताओं का स्वागत एक बार फिर। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कितना अलग है। जहां आज के जीवन में तनाव, चिंता और अवसाद से सभी लोग ग्रस्त हैं।
1: शुक्रिया इस क्वेश्चन के लिए। मुझे लगता है लोगों को इसकी बहुत जरूरत है
0: जी।
1: आजकल बड़ा ही फैशनेबल सा वर्ड है डिप्रेशन
0: जी।
1: अगर लोगों से बात करें तो मिडिल एज हैं, ओल्ड एज हैं, इवन छोटे बच्चे, आप स्कूल गोइंग बच्चों से

0: मानसिक रूप से इतना फ्री हैं कि हम गार्बेज को, कचरे को वहां पर रख पा रहे हैं। हमारे पास उतना समय है कि हम उसे उतना कंज्यूम कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में इतने ही बिजी हैं तो आप कैसे सोच पा रहे हैं कि उसने कैसे कहा, उसने क्यों कहा, किस लिए कहा, कब कहा, दोबारा कब कह सकता है, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। ये सब सोचने के लिए दिमाग को खाली भी तो होना चाहिए
1: जी।
0: अगर आप अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं तो आपके पास सोचने का समय होना नहीं चाहिए। और फिर बात आ जाती है चॉइस और विल पावर की
1: जी।
0: कि क्या सोचना है, मेरे लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ कितनी है, किस काम को करने से मेरा कितना फायदा होने वाला है, वो आप ही को डिसाइड करना है। सबसे बड़ी चीज है, एक 40s में आते आते तक पेरेंट्स, फादर मदर दोनों कहेंगे बेटा पानी का गिलास पकड़ा दो। ये सबसे बड़ा फैक्टर है अपने आप को एज करने का। तो जो लोग काम कर रहे हैं ना गांव में, वो गायों को भैंसों को चरा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेडीज भी कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं, वो आपको वहां पे 80 साल तक भी फिट दिख रहे हैं। तो आपको मान करके चलना चाहिए ब्रेन भी एक मसल है। अगर सही तरीके से आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं दी, हीमोग्लोबिन पूरा नहीं है बॉडी में जो ऑक्सीजन को लेकर वहां जाने वाला है, हरी सब्जियां आप खा नहीं रहे हैं, तो ब्रेन बेचारा क्या करेगा? जरूरत से ज्यादा सोचेगा और डीजेनरेट करेगा हर रोज। हमने उसको काम दिया ही कहां है? मानसिक तौर से तो जो साइंटिस्ट बैठा है ना, बस वही काम कर रहा है मुझे लगता है।
1: क्या यही अवसाद का एक मुख्य कारण हो सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल है, 100%। अगर हम इस चीज को मान करके चले, आपका मूड बहुत खराब है
1: जी,
0: और आप बैठ जाएं और अपना ही कोई एक अर्जेंट काम याद करके शुरू कर दीजिए, पूछती हूँ 15 मिनट बाद वो वैसा टोन रहेगा या नहीं, आप भूल ही जाएंगे।
1: मेरे हिसाब से वो स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे।
0: अचानक से मान लीजिए आपके घर फोन आ जाए, आपकी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं,
1: ठीक है,
0: तो आपके घर के डिप्रेशन का पेशेंट भी उठेगा और भागेगा,
1: अरेंजमेंट करेगा, साफ सुथरा होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए,
0: बिल्कुल। तो आप उनसे पूछिएगा आधे घंटे बाद कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप डिप्रेस्ड है, एक्सेप्ट सीवियर केसेस
1: जी जी,
0: जो उस स्टेट को परमानेंट बॉडी में हैबिचुअल बना चुके हैं।
1: आपने जो अभी शुरुआत में बात की, क्या ऐसा है कि हम साधारण लोगों ने या हर एक व्यक्ति ने अपने माइंड में, अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को जोड़ दिया है जिनकी जरूरत नहीं है?
0: बिल्कुल बिल्कुल। आप जितने टीवी सीरियल्स देखते हैं, कितना ज्यादा आप देखिए, बिग बॉस पसंद है, ये पसंद है, वो क्या है? लेग पुलिंग है, रोस्टिंग करना है। अब इसमें बड़ी बेसिक सी बात आती है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी
1: जी।
0: हर्ड मेंटालिटी का मतलब है, कभी आप एप मैन थे, कभी पुराने जमाने में गुफाओं में रहते थे, तब आपको लीड करके चलने की जरूरत होती थी क्योंकि एक ग्रुप काम करता था कि कभी हाथी आ गया या शेर आ गया तो हम कैसे बचेंगे, तो मिलजुल करके हमें चलना चाहिए
1: जी।
0: और इसको हम हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, और एक उसमें लीडर हुआ करता था। अगर हम मान करके चले, अगर हम अपने आप से अवेयर हैं, तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। मॉनिटर की जरूरत हमें तब है जब हमें ये पता है कि ये नहीं पता है कि हम क्लास में बोल रहे हैं गलत है।
1: ओके
0: अगर हमारी वो हर्ड मेंटालिटी को हम हटा दें तो हमारे आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे कि दरानी जठानी में मैं बड़ी वो छोटी, उस पड़ोसी से मेरी कार बड़ी, या मेरा ऐसे ज्यादा बेटर और उसका ऐसे। ये हर्ड मेंटालिटी ही है कि जैसा मैं सोच रहा हूं, किट्टी पार्टीज में भी ग्रुपिंग हो जाती है, छह लोग एक तरीके की सोच रखेंगे और 10 लोग एक तरीके की सोच रखेंगे, और वो एक दूसरे को खींचते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड दिखेगा आपको, कोल्ड वॉर इसका विटनेस है। आज भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज या सोशलिस्ट इकोनॉमीज इसका विटनेस है। वो जो हर्ड मेंटालिटी है उसकी हमें अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम सब खुद को ही मैनेज कर लें तो क्या ऐसा है किसी को बताना पड़ेगा कि आप ये करिए? क्लास में अगर हर बच्चे को मालूम है मुझे चुप रहना है, तो मॉनिटर की आवश्यकता है ही नहीं। आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं आपको पढ़ना है, आप एक मिडिल एज पर्सन हो, फिर भी आपके एल्डर्स आपको घर में बताएंगे बेटा टाइम से रात को आ जाना, तो क्या आपको नहीं मालूम है? मालूम नहीं है ये बात नहीं, आप उसको रियलाइज नहीं करते, हम उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या करना चाहिए।
1: तो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, और ये मानसिक स्वास्थ्य हम सब लोगों के लिए जो इस विषय के बारे में नहीं जानते हैं, उनको किस तरीके से ये समझाया जाए कि अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, आने वाली जो जिंदगी है उस पर हम एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं।
0: डूज एंड डोंट्स बहुत बेसिक है, जो पुरा

0: पुराने जमाने के लोग जैसे रहा करते थे ना, बिल्कुल वैसा ही जीवन होना चाहिए, सरल स्पष्ट। आप दो झूठ बोलेंगे तो 10 और घुमाने पड़ेंगे, उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा। स्पष्ट रहिए, जो नहीं कर सकते उसको रफ होकर रूढ़ होकर ना बोले, प्यार से बोले मैं इतना ही कर सकता हूँ, ऐसा ही मेरी कैपेसिटी है, तो उसको उसी वे में हैंडल करिए। अपने आप को लीपा पोती करके प्रेजेंट करना कि हम बहुत अच्छे हैं, हम इतना भी हैंडल कर लेंगे, होगा है नहीं, फिर स्ट्रेस में आएंगे, फिर घर में आके सबको डांटेंगे, काम भी चार खराब करेंगे और अपना हेल्थ भी डाउन करेंगे
1: और स्ट्रेस भी होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को जितना सरल रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, गोल ओरिएंटेड रखेंगे कि आपने करना क्या है, आप चाहते क्या है, व्हाट इज योर टारगेट, तो आप उतने ही क्लैरिटी से अपनी डे टू डे रूटीन को भी करेंगे, उतना कियोस भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा।
1: इसके साथ जुड़े दो प्रश्न मैं करूंगा, क्या जो गुस्से वाला होता है या ऊंचा बोलने वाला होता है, क्या वो भी स्ट्रेस और अवसाद से ग्रस्त होता है?
0: बिल्कुल, इट इज अ रिस्पॉन्स, इट इज अ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक लेवल से ऊपर हो जाती है, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगी अटेंशन डेफिशिएंसी, अगर मान लीजिए घर के एक मेंबर को लगता है कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो पक्का चिल्लाएगा
1: ताकि सबका ध्यान उस तरफ जाए।
0: इसको हम बोलते हैं नेगेटिव अटेंशन।
1: Okay.
0: ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिनको प्यार नहीं मिला, एक वो एक बड़ी कॉमन सी बात कही जाती है कि माँ से दिन में कम 6-7 बार प्यार से बैठे, उन्हें गले लगाएं, ताकि आपकी बॉडी के जो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स हैं उसमें से टैप हों, तो वो अब मिलता नहीं है, टाइम है नहीं किसी के पास। वही बात घुमा फिरा करके आती है, बेसिक रूटीन्स पर आइए, वापस उन चीजों पर जाइए, सिंप्लीफाई करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए चीजों को, तो आप उतना ही पीस में आ जाएंगे। और नेचुरली इन सबको कंट्रोल करने की, रेगुलराइज करने की, राइट डिसीजन लेने की पावर हमें 100% हमारा योग और आहार न्यूट्रिशन देता ही देता है। आप जितना तला हुआ खाएंगे, आप एक समोसा खाएं, एक भटूरा खाएं, आपके ब्रेन का जो माइटोकॉन्ड्रिया कम से कम अगले 10 घंटे के लिए ऑलमोस्ट स्लीप मोड पे आ जाता है
1: जी।
0: तो वो आपको चूज करना है
1: कि आपको किस तरीके की जिंदगी
0: चाहिए।
1: जो प्रश्न मैंने सोचे थे आपसे पूछने के लिए, पर जो ये सब्जेक्ट है मानसिक स्वास्थ्य, ये इतना बड़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी है, मैं इस प्रोग्राम में ये एक्सेप्ट करता हूं, शायद हमें भी इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, जो हम सबको सचेत होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहिए। इसके साथ ही एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, जब हम रात को सोते हैं, सोते टाइम हम आराम की नींद कैसे लें? क्योंकि सोते टाइम अगर कोई विचार हमारे मन में या दिमाग में है, उसको हम कैसे ऑफ करें, उसको हम अपने उस समय से अलग कैसे करें, इसका क्या कोई तरीका है?
0: बिल्कुल है, अगर आप संध्या समय में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं बेसिक जो सभी को आती भी होंगी, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, इन सबको अगर हम करते हैं तो ब्रीदिंग से जो ब्रेथ है हमारे, बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है ब्रेथ से
1: जी।
0: एक फैक्टर वो हम कर सकते हैं, मेक इट अ पॉइंट। अगर आप स्कूटर भी चला रहे हैं ना, मुझे लगता है अगर आप वहां पर भी डीप ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं ना, तो वो भी काम करता है। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं कहीं किसी ड्यूटी पर गई हूँ तो मैं वहां खड़े खड़े अपने फिंगर्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाती रहती हूँ, कुछ जो योग की क्रियाएं या ब्रीदिंग है जो मैं खड़े हुए वहां कर सकती हूँ तो वो मैं कर लेती हूँ। वो क्या है, मेरी चॉइस है कि मुझे खड़े रहकर इधर उधर देखना है या वो काम करना है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब हम इन चीजों को रूटीन में लाते हैं तो ये हमें कुछ एक बेटर स्टेट में ले आते हैं कि हम धीरे धीरे धीरे धीरे रिकूप कर सके, वापस एक शांत और वेरी सोफिस्टिकेटेडली हम उस चीज को हैंडल कर लें। दूसरा इसमें आता है, रात को हम मोबाइल का कम से कम सोने से पहले 1.5-2 घंटा पहले यूसेज बंद कर दें, क्योंकि जो ब्लू लाइट है जो इसमें आपकी स्क्रीन टाइमिंग का जो हिसाब किताब है वो बहुत गड़बड़ा देता है आपकी हारमोनी को। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम जो योग बताती है वो सूर्य और चंद्र नाड़ी से चलते हैं, जो कि सूर्य और मून की पोजिशनिंग से काम करते हैं। तो उसमें जैसे जैसे बॉडी को मैसेज मिलता है कि संध्या हो गई है, रात होने का समय है,
1: बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट मोड में आनी शुरू हो जाती है।
0: आती है।
1: तो इसका मतलब है कि अगर हमने मोबाइल सोने के समय तक यूज किया तो वो एकदम बॉडी जो है वो लाइव है, वो सोने के स्लीपिंग मोड में नहीं, अभी नहीं गई है।
0: बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर नॉट मशीन्स कि हमने बटन दबाया ऑन हो गया, बटन दबाया ऑफ हो गया। इट टेक्स टाइम। आप है एक 50 ट्रिलियन सेल्स का सेट
1: जी,
0: तो उसके अंदर एक सेल में इतनी मेमोरी है कि अगर मैं 8 स्टोरीड बिल्डिंग्स को मैं इकट्ठा खड़ा कर दूं, इतनी मेमोरी है जिसको हम बोलते हैं ना संचित कर्म
1: जी,
0: आपके जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो ऑटो मोड में एकदम से ऑफ हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम, उसको टाइम चाहिए,
1: उसके लिए हमें एक प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे खास करके श्रोताओं को मैं एक बार फिर बताऊं कि जब हमारे सोने का समय है, तो श्वेता जी कह रही हैं कि अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप 2 घंटे पहले उसको यूज करना बंद कर दें, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लीपिंग मोड में जाएगी। जब आप सोने जाएंगे तो आप चैन की नींद सो सकेंगे। श्वेता जी, मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, खास करके जो ये वाला सेक्शन है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।
0: इससे पहले मैं एक बताना चाहूंगी कि वही रात की जो नींद है
1: जी,
0: वाईफाई को प्लीज बंद करके सोइए, क्योंकि आपका ब्रेन भी उन सारे के सारे मैग्नेटिक मोड्स को पकड़ता है। आप ये मानकर चलिए, आपको क्यों बोला जाता है कि आपको किधर सिर करके सोना है, किधर सिर करके नहीं सोना है, ये सब चीजें हमें सिखाई गई हैं हमारे हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म में। वो क्यों सिखाई गई? क्योंकि आपकी बॉडी भी एक मैग्नेटिक पोल के साथ काम करती है, और अर्थ भी एक पूरी पूरी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। तो अगर हमारा उसमें मॉडर्म चल रहा है तो वो भी आपके एंटीनास को लाइव रखेगा। और अगर हम बात करें तो हमारे पुराने जमानों में शिखा रखी जाती थी
1: जी,
0: वो एक तरीके का एंटीना ही था। वो आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जब बातें हम बड़ी लॉन्ग उसमें चलते हैं, तो वो ये क्राउन चक्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो वाईफाई को शट डाउन करिए प्लीज, उससे आपकी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड्स, हार्ट इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड ना, वो आपको पूरा ईसीजी तो दिखाई देता है
1: जी,
0: आप उसमें देख सकते हैं। ऐसी हर बॉडी के ऑर्गन की अपनी एक कार्यक्रम करने की सिस्टम की प्रॉपर फ्रिक्वेंसी है। तो वो 100% वाईफाई बंद करके सोना चाहिए। उस टाइम तो हमें जरूरत भी नहीं है
1: जी,
0: तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं, और इसमें हमें कोई टैक्स भी नहीं है
1: जी।
0: बहुत सारे माइग्रेन्स, हेडेक्स वहीं स्नब हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं अगर वाईफाई भी बंद हो जाए तो।
1: जब हम सोते हैं तो हम अपने मोबाइल को अपने सिराने के नीचे रखते हैं, वो कितना घातक है हमारे लिए।
0: पूर्णतः अब इसको मान के चले तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, अगर आप फोन अपने आसपास भी रख के सोते हैं। एटलीस्ट आप थोड़ा दूर रखें, बहुत अच्छा तो ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं तो कमरे से बाहर रखें, उसको स्लीप मोड में डाल दें, एयरप्लेन मोड में डाल दें, कि कम से कम सिग्नल्स जो हैं वो आपकी बॉडी की हार्मनी को डिस्टर्ब्ड करें।
1: आज का हमारा ये कार्यक्रम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा, तनाव और चिंता से बचने के लिए कौन सी साधारण आदतें अपनाई जा सकती है?
0: हमें अपने कामों को शॉर्टलिस्ट करके तैयार रखना चाहिए। हमारे पास हम अगर अभी एक बार बैठ जाए और लिस्टिंग करना शुरू करें, ABCDEFGH, और उसके बाद हम इसमें से प्रायोरिटाइज करें
1: जी।
0: एक पहली कैटेगरी नंबर 1 की निकालें, कुछ 4 या 5 काम से ज्यादा काम निकलेंगे नहीं आपकी पूरी लिस्ट में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी।
0: उसके बाद सेकेंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड तक तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। होता क्या है, हम थर्ड फोर्थ ग्रेड के कामों में ही इन्वॉल्व रहते हैं और फर्स्ट सेकेंड रह जाते हैं, फिर वो हम मेंटल प्रेशर में आते हैं। स्ट्रेस इज नॉट अ वर्ड, मतलब अगर हम मान के चले ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैनेज हम करते हैं वैल्यूएबल्स को, असेट्स को, अच्छी चीजों को। मैनेजमेंट वर्ड वहीं से बना है, सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड वहीं से बना है
1: जी।
0: लेकिन जहां ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ थिंग टू बी मैनेज्ड, इट इज अ सिचुएशन। जब देर इज अ लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंडक्ट,
1: स्ट्रेस इवॉल्व्स।
0: आपने जो रूटीन छोड़ी, जो प्रायोरिटी वाला काम छोड़ा, वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, दैट विल बैकफायर, और फिर वो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में हार्म करेगा ही करेगा।
1: श्वेता जी, मुझे लग रहा है कि हमें एक और कार्यक्रम करना होगा, ताकि हम और विस्तार से लोगों से जुड़ पाएं और उनको कुछ दिशा निर्देश दें। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अंबाला के लिए काम करते हैं और अंबाला के लोगों को हम एक सही दिशा दे पाएं। यहाँ पर गुंजाइश है एक और गाने की, और हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं को बातचीत के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करें। तो कौन सा ऐसा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं और हम श्रोताओं को भी सुनाएं?
0: एक हल्का फुल्का सा गीत लेते हैं, एक प्यार का नगमा है।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्वेता जी का ये मनपसंद गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आज हम बात कर रहे हैं श्वेता शाह जी से। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए संतुलित आहार की भूमिका कितनी जरूरी है।
1: खाने पीने से ही हम अपने शरीर को रेडी करते हैं
0: जी।
1: आप ज्योग्राफिकली भी अगर दूसरी तरह से भी एनालाइज करें, मोमोज हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट नहीं था
0: जी।
1: और उसके साथ वो जो बहुत तेज मिर्च और लहसुन की चटनी मिलती है वो भी नहीं था। उसका कारण क्या है कि जिस जगह से वो आया है डेलिकेसी, वहां पर कच्चा मैदा डाइजेस्ट हो जाता है, वहां की बॉडी के, वहां के जो टेम्परेचर इतने मिनिमम में रहते हैं, वहां पे बॉडी को एक्टिव रखने के लिए उनको तेज मिर्च चाहिए
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे यहाँ के लोगों का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और यहाँ का जो रहन सहन है, उसी हिसाब से हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें इतनी तेज मिर्च खाने की जरूरत नहीं है। हमारा पेट उतना, हमारे जेनेटिकली हमारी इतनी बॉडीज अडाप्टिव नहीं है कि हम उस कच्चे मैदे को अच्छे से पचा सकें। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए कि हम उन चीज़ों को कम खाएं। जितना तेज मिर्च खाएंगे, जितना मसाले तेज करेंगे, वो उतना ही आपकी बॉडी में एंजाइटी क्रिएट करेंगे, हाइपरनेस क्रिएट करेंगे। जितना ब्लैंड खाना होगा उतना ही शांत इंसान आपको दिखाई देगा।
0: यानी कि उसको हम तामसिक खाना बोल सकते हैं।
1: यही क्लासिफिकेशन इसीलिए उन्होंने बनाई है ना हमारे शास्त्रों ने कि ये ऐसा है ये ऐसा है, उसका कारण है। अब मान लीजिए कोई भी चीज जो तामसिक बोली गई, अब इस बारे में बात की जाए तो शायद मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है इस बारे में बात करने की। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है हर समय, वेजिटेरियन डाइट लें या नॉन वेजिटेरियन डाइट लें या कैसे करें। पहली चीज साइंस, बेसिक साइंस, कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट प्लांट ने कन्वर्ट किया एनर्जी को, प्लैनेट पे एनर्जी सन से ही आ रही
0: जी।
1: है, उस प्लांट फूड को अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं तो आप पहले फेज पर हैं। अगर उस प्लांट को पहले डियर ने खाया, डियर से लॉयन ने खाया, तो क्या लॉयन के पास उतनी एनर्जी जाने वाली है?
0: मेरे हिसाब से नहीं,
1: बिल्कुल भी नहीं। तो जितना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उतना ही आपके अंदर मॉलिक्यूलर, जिसको हम योग की भाषा में कहें तो प्राण शक्ति क्षीण होती जाती है
0: जी जी।
1: तो अगर हम पहले तो अपने फूड को प्लांट बेस्ड रखें, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए हम क्रिलियन फोटोग्राफी की बात करते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी जो हमारे ऋषि मुनियों ने आमतौर से आंख बंद करके ही सब कुछ देख लेने का जो उनकी कला थी, वो अब थोड़ा साइंस ने भी अपने आप को डेवलप किया है। क्रिलियन फोटोग्राफी रहती है, एवरीबडी कैन सर्च, आप देख सकते हैं, सब गूगल पे आपको मिलेगा
0: जी।
1: तो अगर आप उसकी पिक्चर्स देखें तो एक रॉ फूड की, जो अगर आप एप्पल काटें या कोई भी फ्रूट काटें या कोई भी ऐसा रॉ फूड जो आप सीधा खाने वाले हैं, उसके अराउंड में एक वॉयलेट एनर्जी का लाइन दिखता है,
0: ठीक है,
1: जो फुली स्पार्कलिंग रहता है, फुल ऑफ एनर्जी,
0: ठीक है।
1: वही अगर आप लोफ ऑफ मीट में देखेंगे यू विल फाइंड हार्डली एनी एनर्जी।
0: ओके,
1: हार्डली एनी एनर्जी। तो आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ जुबान का स्वाद ले रहे हैं, खाना तो जा नहीं रहा अंदर। दूसरी बात आती है फ्रिज में रखा हुआ खाना
0: जी।
1: 40 मिनट्स के बाद खाने की वैल्यू, जो हमारा जो यूनिवर्स को समझाने की जो बेसिक हमारा सनातन का तरीका है, कथाओं से शिव तत्व जो है वो तोड़ने का तत्व है, तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो साइंस कहता है डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो फूड की जो एथिक वैल्यू है, जो उसमें गुणवत्ता थी, प्राण शक्ति थी, वो घट गई। और दो दिन बाद आप फ्रिज से निकाल के खा रहे हैं, 6 दिन बाद निकाल करके खा रहे हैं, तो वो इट इज यूजलेस, उसमें कुछ है ही नहीं।
0: न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसकी खत्म हो गई। आपका कहने का मतलब है कि हम जो भी कुछ खाएं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, अगर आप उसको, आप मान के चलिए पाठ पूजा को अगर हम छोड़ भी दें किसी भी गुरुद्वारे में, मंदिर में खाना क्यों इतना अच्छा लगता है लोगों को भंडारे का, कारण क्या है? उसी समय बना और उसी समय कंज्यूम हो गया
0: जी।
1: तो जितना फ्रेश कुक्ड फूड होगा, पहले तो पकाना ही कम चाहिए, चलो जितना भी, और हम इतना साधु संत तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही इस मोड में आ जाएं, बट जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए फ्रेश फूड इनटेक एंड नॉट मोर देन अ डे। मतलब वो जो फ्रिज का कॉन्सेप्ट है ना, उसकी हमें जरूरत नहीं है,
0: नहीं है।
1: जो बना है जैसे बना है उसको विद इन अ डे कंज्यूम करिए,
0: यानी कि उतना ही बनाइए जितनी की जरूरत है, नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा उसको बनाया जा सकता है, ताजा बनाया जाए और ताजा खाया जाए।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज के डेट में मोटापा है उसको कम करना है या उसका बढ़ना है, तो क्या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या उसका उसके साथ कोई कनेक्शन है?
1: बिल्कुल है। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग आपस में लैंग्वेज में स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं कि इसको तो कुछ भी खिला दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको तो घी का पीपा पिला दो तब नहीं फर्क पड़ने वाला और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पानी पीते हैं तभी हमें बहुत मोटापा चढ़ता है। उसका कारण क्या है?
0: इसका कारण
1: कि आपका मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट है बॉडी का। हर बॉडी अपने हिसाब से जो आप खा रहे हैं उसको एसिमिलेट करने के लिए पहले तोड़ती है
0: जी।
1: तो उस तोड़ने के प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, फिर आ जाती है बात की सही खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, ताकि अगर एक सिंगल, मैंने पहले भी बताया कि अगर एक सिर्फ मैग्नीशियम कम हो जाएगा ना तो आप सो नहीं पाएंगे रात को। तो वो ही है, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक चीज होगी तो दूसरी अब्सॉर्ब होगी। डी, विटामिन डी होगा तो आपका कैल्शियम जनरेशन प्रॉपर होगा, घुटनों की दर्द, बैक के एक, ये सब कनेक्टेड है। तो आपको सब चीज चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए और सही टाइम पर चाहिए, जिससे आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो सही चले। कुछ योगिक क्रियाएं भी होती हैं जो अगर गड़बड़ा चुकी हैं तो उनको हम सेट
0: किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उन ये आपका शुगर है वो क्या है, आपका एक ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, जो नेचुरल बनना चाहिए था वो आर्टिफिशियली लेना पड़ रहा है
0: जी।
1: तो वो सारे जो चीजें हैं अगर हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं
0: तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को, योग, मानसिक स्वास्थ्य और न्यूट्रिशनल वैल्यूज, जो हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, हम अपनी दिनचर्या में किस तरीके से इन तीनों चीजों का समावेश करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं?
1: एक घंटा आप निकालिए, उसमें डिसाइड करिए आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, सही खाना है। फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को जरूर ऐड करिए, वो बेस्ट हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए
0: जी।
1: फिर उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें, माइक्रोवेव का काम कम करें, वाईफाई का काम कम करें, अपने इंटरनेट का यूसेज लिमिटेड करें, स्क्रीन टाइम को थोड़ा घटाने की कोशिश करें। आप जो भी देखते हैं वो क्रिएट करते हैं, आप जो भी समझते हैं वो अपनी बॉडी में एम्पलीफाई करते हैं। कुछ कहा भी जाता है कि हस्बैंड वाइफ भी इतने सालों बाद भाई बहन से दिखते हैं, उसका रीजन क्या है? एक जैसा न्यूट्रिशनल डाइट जा रहा है
0: जी।
1: एक जैसा एनवायरमेंट है, एक जैसी एथ्रिसिटी हो जाती है, तो वो जो एथ्रिक कनेक्शंस हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, एक से हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर्स भी एक से दिखने लगते हैं। तो वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी रूटीन्स को, खान पान को इस तरह से रखें कि आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल रहे। डूज एंड डोंट्स में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालूम सबको सब कुछ है लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और डिसाइड करते हैं तो विल पावर नहीं शो कर पाते हैं।
0: तो अगर हम इसको सही दिशा में अपनी जिंदगी को लेके चलें, अपने बॉडी को लेके चलें, तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ सकती है?
1: बिल्कुल बढ़ सकती है। पुराने आज से 30 साल पहले वाली जो जनरेशन थी वो आपसे ज्यादा काम कर लेती है जो आज के 40 इयर्स के लोग काम कर सकते
0: जी जी।
1: उसका कारण यही है कि उन्होंने कुछ आपसे बेटर खाया है। आप देखिए कितनी बड़ी मिथ है कि देसी घी में खाना जो बनाया जाता है, वो पहले बुजुर्ग होते थे उबालते थे सिर्फ दाल और उसके बाद ढेर सारी घी ऊपर से डाल के देते थे। उसका कारण क्या है? आप जब घी में सब्जी बनाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खत्म हो जाता है, वो आपकी वैल्यूलेस जैसी चीज हो जाती है।
0: अच्छा।
1: तो आप उसको कच्चा खाएं। आप जैसे पिनिया बनाते हैं तो तल तल के बनाते हैं, आप सारी चीज उसमें फ्राई करते हैं, आप उसको रोस्टेड वे में, आई माइसेल्फ मेक द होलसम डाइट ऑफ न्यूट्रिशन, मेरा पूरा एक रेंज भी है उसके लिए। तो वो आपको सारा कुछ देख करके, पुराना टाइप में जैसे छाछ का कंजम्पशन बढ़ाइए, लस्सी का कंजम्पशन बढ़ाइए, अपने कोल्ड ड्रिंक्स को कट डाउन करिए, वही है बेसिक साइंस है। CaCO3 आपका जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम से बनता है, मतलब कि आपकी हड्डियां हर बार खत्म होती हैं जितनी बार आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो उसको सब्स्टिट्यूट करिए, वहीं स्नब करिए कि नहीं, इसकी जगह मैं जलजीरा उठा लेता हूँ, इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ,
0: नींबू पानी
1: ले सकते हैं आप, बाहर जाएं गन्ने का जूस लें, जहां जो पॉसिबिलिटी है आप उसको ऑप्ट करें। ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि आप बिल्कुल ना करें, लेकिन मिनिमल कर सकते हैं,
0: कम कर सकते हैं
1: बिल्कुल, वो आपको कुछ फायदा दे।
0: श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें बताई और मुझे ऐसा लगता है कि हमें आपको फिर आमंत्रण देना होगा। बहुत सारी बातें आज पूरी नहीं हुई क्योंकि समय हमें बता रहा है कि समय पहले ही पूरा हो चुका है और आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अम्बाला के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: इस चीज को मान करके चलें कि मेरी तहे दिल से इच्छा रही है और मैं शुरू से ये काम करती भी रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझें कि वो खुद के मॉनिटर बने। अगर वो खुद के मॉनिटर हैं तो उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: अगर खुद का मालूम है कि ये चीज सही है और ये मुझे करनी है तो वो खुद से भी करेगा, उसके लिए वो कुछ भी ढूंढेगा, कोई भी कंटेंट भी पढ़ेगा, कुछ भी रिसर्च भी कर डालेगा। अगर किसी को कोई सूट बहुत पसंद है ना तो अल्टीमेटली वो हस्बैंड को कन्विंस कर ही लेगी कि हाँ भाई मुझे तो लेना ही लेना है। तो इट द मीन्स एंड मेजर स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू डिसाइड। आपका लाइफस्टाइल आपके चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है, तो आपको चूज करना है करेक्ट तरीके से, वही मेरा मैसेज है और वो हर चीज पर इम्प्लीमेंट होता है
0: जी। अगर अम्बाला का कोई भी व्यक्ति आपसे कोई राय या जानकारी लेना चाहते हैं, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है, प्लीज वो भी बताएं।
2: जी बिल्कुल, मैं खुद एक अपनी फूड रेंज आइटनरी बनाती हूँ जिसमें मैं लोगों की डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए उस ऑर्गेनिक सल्फरलेस नॉन फ्राइड या नॉन प्रिजर्वेटिव मेमोरी बाइट्स इस तरीके की जो आइटम्स हैं उसमें रहती हैं, जो कि कुछ फ्रूट क्रशेस हैं या चटनीज हैं, डिटॉक्स वाटर्स हैं, पिन्नीज हैं, बाइट्स हैं। और इन सब के लिए मुझे इस नंबर पर 3 से 8 बजे तक कांटेक्ट किया जा सकता है और वो नंबर है 8307000025 यानी 8307000025।
0: अम्बाला कैंट में जो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है, यहाँ आके आपको कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया लगा, एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि वो कम से कम अपने प्रति जागरूक हो जाएं, जिस नींद में या जिस सुषुप्ति में वो हैं उससे थोड़ा सा
0: वो जाग जाएं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि जो अब बात आप कह रहे हैं कि बहुत बुरा लगता है कि छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है
0: जी,
1: तो वो चीज अगर घटाई जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम अपने श्रोताओं को आपके एक और मनपसंद गीत के साथ छोड़ना चाहेंगे, आप उस गीत के बारे में बताएं और उसके बाद हम लेते हैं इजाजत।
1: हाँ, वो गीत है बड़े अच्छे लगते हैं।
0: तो श्रोताओं आप मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
1: जय भारत।
3: बड़े अच्छे लगते हैं
4: क्या?

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। आज के मेहमान थे श्रीमती श्वेता शाह। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

और नई लघु कथा जिसको हमें भेजा है श्री राजीव गौड़ ने। राजीव गौड़ जी ने स्वयं इस लघु कथा को संशोधित किया है। आइए सुनते हैं उनकी ये लघु कथा जिसका शीर्षक है दुलारा। शाम करीब 3:30 बजे फोन की घंटी बजी। महिला ने फोन उठाया और पूछा, हेलो, हाँ कौन? एक बूढ़े की उधर से कांपती हुई आवाज आई, बेटा मैं बाबूजी हूं, तुम्हारी माँ बीमार है, शायद तुम बिजली का बिल भरना भूल गए हो, लाइट भी चली गई है, पड़ोस में शर्मा जी की बेटी की शादी है इसलिए सभी पड़ोसी शादी में गए हुए हैं, हम नहीं जा पाए क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार है ना, और घर में राशन भी नहीं है, तुम कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ। महिला ने कहा, हेलो बाबूजी कौन, लगता है कोई गलत नंबर मिल गया तुम्हें। बुजुर्ग ने कहा, सॉरी बेटा, हर बार मेरा बेटा मुझे फोन करता है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे का नंबर नहीं पता, मैंने फोन की डायरेक्टरी से एक नंबर ढूंढा था, वो गलती से तुम्हें लग गया। महिला ने कहा, बाबूजी चिंता मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस लेकर आती हूँ, आप मुझे अपने घर का पता बताइए। बुजुर्ग ने पता लिख दिया। महिला ने कहा, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी इस पते पर आ रही हूँ। और महिला ने एम्बुलेंस को कॉल किया और घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस से डॉक्टर को कॉल आया, हेलो मैडम, आपने जो पता लिखा था ना, वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति की लाश मिली है। महिला भावुक हो गई, डॉक्टर साहब आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पहुंचती हूं। महिला वहां पहुंची, एक बुजुर्ग महिला सोफे पर मृत पड़ी थी। बुजुर्ग व्यक्ति एक हाथ में फोन की डायरेक्टरी लिए जमीन पर मरा पड़ा था। महिला ने अपने मोबाइल से बुजुर्ग दंपति की कुछ तस्वीरें ली, डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि इन दोनों की मौत तो 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी है। महिला ने कहा, ये कैसे हो सकता है, अभी कुछ देर पहले तो मेरी बात हुई है, ये देखिए इसमें मेरा मोबाइल नंबर होगा। महिला ने अपना मोबाइल देखा तो उसमें कोई नंबर नहीं था। महिला हैरान रह गई। पुलिस ने मदद की, उसके बेटे को ढूंढा, सुबह पड़ोसी आया। पड़ोसी ने बताया कि बेटा सालों से घर नहीं आया है, वो हर महीने खर्च के लिए पैसे भेज देता है। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि बेटे ने 2-3 महीने से पैसे भी नहीं भेजे, घर में राशन भी नहीं था। बेटे की इज्जत छिपाने के लिए पड़ोसियों को भी ये सब बातें नहीं बताई थी उन्होंने। महिला ने बेटे को फोन कर घटना की जानकारी दी। बेटे ने कहा, आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता, तुम अंतिम संस्कार कर दो, मैं 2-4 दिन में प्रॉपर्टी का काम देखने आ जाऊंगा। महिला गुस्से में बोली, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें भेज रही हूं, जिस स्थिति में तुम्हारे पिता की मौत हुई है शायद यही उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो तुमसे बात कर सके, और इस फोटो को कभी डिलीट ना करना क्योंकि ये तुम्हारा भविष्य होगा। ये जानकर बहुत दुख होता है कि जो माता पिता अपने बेटे को खून पसीना करके पढ़ाते हैं ना, जिसको वो अपना दुलारा समझते हैं, सारा प्यार जिसके ऊपर वो लुटा देते हैं, वही बच्चे एक दिन अपने बुजुर्ग माता पिता के अंतिम संस्कार तक में नहीं आ सकते। ऐसी संतान पर सिवाय लानत और अफसोस के और क्या किया जा सकता है। एक बुजुर्ग दंपत्ति की आखिरी इच्छा देखो, अपने बेटे से बात करना, और वो भी अधूरी रह गई आखिरी इच्छा।

बांधी सबा जाओना नदी के उस पार, पूछ के आओना उनसे उनका हाल, क्या करती हैं, कैसी रहती हैं, कैसी सोती हैं, कौन सी करवट लेते हैं वो, उनकी आंखें छू कर आओना, उनके माथे को चूम कर आओना, उनसे पूछ के आओना, वो चुपचाप क्यों रहते हैं, क्या मेरे बारे में कभी सोचते हैं। बादी सबा जाओ ना उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ ना, उनसे जाके कहो ना एक बार मिलने आओ ना। ऐ बादी सबा जाओ ना उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ ना, उनसे जाके कहो ना एक बार मिलने आओ ना। ऐ बादी सबा जाओ ना नदी

जहां पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या, उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्रे तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या, उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या, उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी

में तनहा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको, जो हो जाओ जिंदगी में तनहा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको।

मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों तक जागना अच्छा लगता है। मुझे है मालूम कि वो मेरी किस्मत में नहीं, मगर खुदा से उसे मांगता हूँ तो उसे मांगना अच्छा लगता है। उसे प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास में जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर ये ख्वाब देखता हूँ तो ये ख्वाब देखना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे हक है या नहीं, पर उसकी परवाह करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है।

खुशबू की महकार है और तभी मोहतर हुआ है ये जहां। मेरे बरसों के तस्वुर में तुम अचानक यूं दस्तक दे गए, ये मैंने कभी सोचा न था। और ख्याल बनकर उतर जाओगे मेरे वजूद में, इसका तस्वुर मैंने

क्या आप जानते हैं रेडियो सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि रेडियो सुनते समय हम कोई भी काम कर सकते हैं, और हमें रेडियो से कई बार ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारा जीवन भी बदल सकती है। तो सुनते रहें रेडियो वितस्ता 90.0 FM, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: पेश है कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2, प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपुरी, लेके आया हूं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2, जहां बात करेंगे दोस्ती की, समर्पण की। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के साथ खुशियां और दुखों को साझा करना। दोस्त वो है, एकदम वो भी ऐसे ही होता है जैसे हम हैं, और हमें बदलने की कोशिश नहीं करता। सच्चे दोस्त हमारे अनमोल रत्न होते हैं जो हमारे जीवन को चमकाते हैं। एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ रहता है, चाहे जिंदगी में कैसी भी मुश्किलें आएं।

दोस्त हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होता है। जब दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब भी जिंदगी में सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है तो हमारे अनमोल दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं और अपने अनुभव साझा कर एक यादगार बनाते हैं जिसको हम जीवन भर संजो के रखते हैं।

ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका दोस्त ना हो, जो दोस्त की अहमियत ना जानता हो। हमारी जिंदगी में ज्यादा दोस्त ना हो पर कम से कम एक दोस्त जरूर होता है, और उनके साथ समय बिताना किसको अच्छा नहीं लगता। खासकर बचपन की दोस्ती तो बहुत गहरी होती है, जिनकी यादें सदा के लिए मन में बस जाती हैं।

ऐसा नहीं कि मित्रता बनावटी नहीं होती, पर जहां बनावटी मित्रता की जाती है वो स्वार्थ से भरी होती है। कोई भी संकट आए तो सच्चा मित्र ही उस मुश्किल घड़ी में साथ देता है, सारे कष्टों को दूर करता है। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने अपने एक सुंदर दोहे में कहा है, आगे के मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित आहे गति संभाई, उस कुमित्र परिहे रहनी बलाई। अर्थात जो आपके सामने मीठा मीठा बोलता है और मन में बुराई रखता है, आपका बुरा चाहता है, तथा जिसका मन सांप के चाल सम्मान टेढ़ा है, ऐसे मित्रों को छोड़ देने में ही भलाई है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2 भारत सोपोरी के साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है, आइए इस चर्चा के साथ करते हैं समापन इस कार्यक्रम का। सच्ची दोस्ती अनमोल होती है और मानव जीवन में इसका अत्यधिक महत्व होता है। मित्र सबके लिए निसंदेह रूप से एक आशीर्वाद है जो ऊपर वाला प्रदान करता है। एक सच्चे दोस्त होने से बेहतर कुछ भी नहीं, जिसके साथ आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं और कभी भी जरूरत होने पर उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन को अर्थ देता है और हमारी जिंदगी को सरल और खुशहाल बना देता है। इसी अच्छे विचार के साथ करता हूं समापन आज के इस कार्यक्रम का। आप अपना फीडबैक इस कार्यक्रम के बारे में दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जल्द और किसी प्रोग्राम में भेंट करेंगे, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम दोस्ती अनमोल, एपिसोड 2। एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो गुतस्ता की पेशकश।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

पेश है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी। आज के मेहमान हैं डॉक्टर सुरेश कुमार वारित। प्रस्तुत करेंगे भारत सुपोरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज फिर समा बांधते हैं शायरी का। डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम काव्य गोष्ठी की ओर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आज के आमंत्रित कवि और शिक्षा विद्वान स्टूडियो में आ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत इन पंक्तियों के साथ। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे जिल मिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। स्वागत है आपका डॉक्टर सुरेश कुमार लखनपाल जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भारत सपोरी जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका, आपके नए FM रेडियो स्टेशन रेडियो बेतिस्ता हम सफर जिंदगी का।
0: सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई।
1: जी भरत जी, मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर में एक छोटा सा गांव है जोड़ियम नेरी करके, और वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। और मेरी बेसिक एजुकेशन मैट्रिक तक वहीं मेरे गांव के ही स्कूल में हुई थी, गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद हायर स्टडी के लिए मैं जिला स्तर पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर से सन 1998 में मैंने वहाँ से स्नातकोत्तर नॉन मेडिकल से ग्रेजुएशन किया है।
0: डॉक्टर साहब, जब से मैं आपसे परिचित हूँ तब से तो मैंने आपको अंबाला में ही देखा है, और जहाँ पर हमारा जन्म हुआ होता है, क्या वो हर दिन आप याद करते हैं?
1: जी हाँ, मेरा भी यही मानना है कि जो हमारी जड़ें होती हैं, हमारी मातृभूमि होती है, वो हमें कभी नहीं भूलती है। रह रह के अपने गांव, खेतों, खलिहानों की याद आती है। इस भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में हमेशा दिल करता कि हाँ, भाग के वहीं चलें, वापस वहीं पहुँचें। तो हमेशा ही गांव, मेरा गांव जो है वो मेरे दिल में ही रहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह के गांव के लोग रहते हैं, सिंपल सीधे साधे, यहाँ की लाइफ में भी, शहर में जितनी भी आपाधाबी है उसमें भी मैं कहीं ना कहीं गांव के ही माहौल की तरह उसी तरह से रह पाऊँ। और इस पे भी मेरी कुछ चंद लाइनें हैं। हाँ। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भीड़ आसानी से रास्ता नहीं देती, भीड़ आसानी से रास्ता नहीं देती, जिंदगी जीने का वास्ता नहीं देती, जिंदगी जीने का वास्ता नहीं देती, रहो तैयार तूफानों से टकराने के लिए, रहो तैयार तूफानों से टकराने के लिए, हौसले की पतवार कभी हादसा नहीं देती, हौसले की पतवार कभी हादसा नहीं देती।
0: वाह, क्या बात है। बातों का सिलसिला हम आगे की ओर चलाते हैं। आपका उपनाम वारिद है, कृपया बताएं इसके मायने क्या है, कब से आप इस नाम से जाने जाते हैं?
1: जी, मैं बचपन से ही, आप कह सकते हैं कि जो मौसिकी है, लाइट सॉफ्ट म्यूजिक होता है, उस तरफ मेरा रुझान रहा है। मैंने बहुत बचपन में, जब मैं टीनेजर था, तभी मैं मुकेश के गाने बहुत सुना करता था, हेमंत कुमार को, KL सहगल को, मेरे पास आज भी उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। और उन दिनों से ही धीरे धीरे गुनगुनाते हुए कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। तो कॉलेज टाइम में, उसके बाद भी जो भी ख्याल आता गया वो लिखता गया, मैं कभी किसी को बताया नहीं, लिखते रहे डायरी में, पन्ने भरते रहे भरते रहे। और एक समय आने के ऊपर जब लगा कि हाँ, अब मैं कुछ सीख गया हूँ, कुछ लिखना आता है मुझे, अपनी बात को मैं शब्दों में कह सकता हूँ, फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना इसको डिफरेंट मंच के ऊपर बताने की कोशिश की, और वही कोशिश अभी भी जारी है।
0: तो जो उपनाम वारिद है,
1: जी हाँ,
0: इसका जन्म कैसे और कहाँ हुआ?
1: हाँ, उपनाम के लिए जैसे शुरू में तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि हाँ, जो राइटर लोग होते हैं वो ऐसा कोई एक पेन नेम भी रखते हैं,
0: तखल्लुस रखते हैं,
1: तखल्लुस कहते हैं उसको, पेन नेम कहते हैं, उपनाम कहते हैं। तो जब लगा कि हाँ मुझे भी होना चाहिए, तो शुरू में मैंने आमिर करके एक नाम लिया और मेरे दोस्तों में काफ़ी प्रचलित रहा, लेकिन उसका कोई एज सच कोई मीनिंग नहीं था। एक बहुत पुराने शायर हुए हैं आमिर काजलवाश, उनकी बहुत अच्छी शायरी थी, तो उनका एक शेर है, जब भी आती है तेरी याद कभी शाम के बाद, जब भी आती है तेरी याद कभी शाम के बाद, अक्सर याद आती है बेदिली शाम के बाद। उनसे मैं थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो, तो उनसे मैंने ये आमिर उपनाम लिया था। लेकिन रिसेंटली जब इनका इस नाम की महत्ता का पता चला, तो मैंने एक संस्कृत का वर्ड वारिद अडॉप्ट किया और इसका मीनिंग होता है बादल, कुछ इसका मीनिंग होता है फूल से जो सुगंध आती है, वो भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे बादल का एक स्वभाव है कि वो स्थिति के अनुसार, हवा के अनुसार वो कहीं पे भी चल सकता है, जिस तरह उसका मूड होता है उस तरह से वो अपना कहीं बरस सकता है, कहीं बिना बरसे जा सकता है। तो ये नाम मुझे लगा कि हाँ मेरे लिए सही है, तो मैंने अपनी शायरी में फिर ये नाम यूज़ करना स्टार्ट किया।
0: यानी कि अब हम आपको डॉक्टर सुरेश कुमार वारिद के नाम से जान सकते हैं।
1: जी हाँ, ये सही है।
0: बहुत ही आपने इसका विस्तार में बताया और आपने बात की बादलों की। बादल अपने मर्जी के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है अपनी जगह। जब हम किसी जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें बादलों की असली जो शक्ल है वो दिखती है, और वहां भी वो एक जगह नहीं होते हैं। तो क्या हम ये मान के चलें कि डॉक्टर सुरेश कुमार वारिद साहब का जो मन है वो ऐसे ही बादलों की तरह शब्दों के मौसम में बदलता रहता है?
1: जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह से है। मुझे जो हमारी दैनिक घटनाएं होती हैं, हमारी जिंदगी में कुछ होता है, हमारे आसपास कुछ होता है, वो काफ़ी विचलित करता है। खासकर कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको लगता है समाज में नहीं होनी चाहिए, तो मैं उनके ऊपर चिंतन करता हूं और वो जो सिचुएशंस हैं वो मुझे शब्द देती है, वो मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उनको हम बदल सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेके कुछ ख्याल आते हैं और उन ख्याल को हम गजल में, शेर में परिवर्तित करते हैं।
0: तो फिर कुछ समाधान, यानी कि आपका कहना है कि जब भी आप कुछ देखते हैं फिर आप लिखते हैं, तो वो एक तरीके से उस समस्या का समाधान हो सकता है? तो
1: जी हाँ, बिल्कुल रहता है,
0: तो कुछ हो जाए फिर।
1: हाँ बिल्कुल जी, जैसे अपने उपनाम से मिलता जुलता कुछ मैं कहना चाहूंगा। मैं बादल की तरह सफर करता रहा उम्र भर, मैं बादल की तरह सफर करता रहा उम्र भर, मैं बादल की तरह हवा पर उड़ता रहा उम्र भर, कभी चला कभी रुका, कहीं गरजा तो कहीं बरसा, कभी चला कभी रुका, कहीं गरजा तो कहीं बरसा। तुम मौसम तो नहीं, हाँ तुम बारिद, तुम मौसम तो नहीं, फिर क्यों रोज बदलते रहे मौसम की तरह, मौसम की तरह, मैं बादल की तरह सफर करता रहा उम्र।
0: आपने बादलों को आज अपने लफ्जों में कैद कर दिया। आगे चलते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार वारिद साहब, आपकी विनम्रता ही आपकी पहचान है। आपने एमएड, एमफिल और पीएचडी फिजिक्स में किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साइंस और शायरी का क्या रिश्ता है आपस में, और कैसे आप ये बताते हैं?
1: वैसे तो अगर हम लेमैन की तरह देखें तो इनका आपस में कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, पर क्योंकि एक जो साइंटिस्ट होता है वो भी परिस्थितियों को, सरकमस्टांसिस को ऑब्जर्व करता है, और एक कवि का भी मन उसी तरह से होता है
0: जी,
1: और वो भी परिस्थितियों को देखता है, समझता है, दोनों ही अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करके लिखते हैं। एक साइंटिफिकली वे में लिखते हैं और एक पोएटिक वे में लिखते हैं, तो मन दोनों का ही सेम है। मेरे साथ भी शायद कुछ इसी तरह से है, और साइंस की एजुकेशन ने मुझे एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना ये सिखाया है, और कभी मन ने मुझे लोगों को समझने के लिए, हमारे जो आसपास परिस्थितियां बनती हैं उनको समझने के लिए कभी मन दिया है। तो मैं बस इसी सोच के साथ दोनों ही चीज़ों को साथ में चलाते हुए और दोनों ही में बराबर मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि कभी बनना आसान है, या ऐसा भी नहीं है कि हाँ साइंटिस्ट बनना आसान है, लेकिन मेहनत दोनों ही तरफ बराबर लगती है।
0: मैं आपकी दिल की बात आपसे जानना चाहता हूँ, आपको सुकून दोनों इन्वेंशंस में कौन सी इन्वेंशन देती है?
1: देखिए, वैसे तो मैं एज अ टीचर हूँ, और जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वो मेरे लिए सुकून के पल होते हैं
0: जी।
1: लेकिन जब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो तब मुझे पोएटिक टर्म में अपने आप को डिफाइन करने का मौका मिलता है। वो शब्द मेरा साथ देते हैं, वो कविता मेरा साथ देती है। जब कोई नहीं होता है, सिर्फ मैं होता हूँ, तो बस पोएट्री निकलती है और कुछ नहीं निकलता।
0: इसके साथ जुड़ता हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा, जब एक कवि रात के समय सो रहा है और कभी उसकी नींद खुल गई तो उसके मन में कोई विचार आया, क्या वो कवि उन विचारों को उसी समय लिखना पसंद करेगा या सवेरे तक इंतजार करेगा? क्या वो विचार सवेरे तक उनके मन में रहेगा कि नहीं रहेगा?
1: नहीं, ये बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। जो भी ख्याल आता है वो क्षणिक होता है, अगर हम उसको लिख नहीं पाते तो वो मर जाता है।
0: मतलब उसको आप दोबारा याद भी नहीं कर पाएंगे?
1: नहीं, आप उस सिचुएशन में नहीं आते हैं, ये हमेशा रहा है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। साइंस में भी एक एग्जाम्पल आता है मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया है, और उनकी बहुत सारी डिस्कवरीज उन्होंने लिखा है कि जब वो थक गए, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला और वो सोने चले गए, तो रात को वो क्वेश्चन उनकी डायरी में सॉल्व होके मिला करता था। दैट मीन्स कि उनको ये याद भी नहीं रहता वो कब उठे, कब उसका सोल्यूशन लिखा और कब वो सो गए। तो ऐसे ही पोएटिक लोगों के साथ होता है, जब वो ख्याल आता है वो अगर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको नहीं लिख पाते हैं, तो वो ख्याल उसी टाइम खत्म हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी रहता है कि हम उसको लिख लें और वेट ना करें कि हाँ मैं सुबह लिखूंगा या बाद में लिखूंगा।
0: यानी कि उसको उठना पड़ेगा और उसको
1: बिल्कुल
0: नोट करना पड़ेगा, ताकि अगले समय फिर जब समय तब उसको फिर एलोबरेट किया
1: जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे रहता है।
0: अब हम कविता की बात कर रहे हैं, शायरी की बात कर रहे हैं, तो कोई सी भी आपकी मनपसंद कविता जो आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: जी हाँ, क्योंकि मैं एक अध्यापक भी हूँ, तो हमारा एम रहता है कि हम कुछ ना कुछ अपने विद्यार्थियों को हमेशा ही कुछ ना कुछ बताते रहें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे कर सकें या किस तरह से, किस नज़रिए से ज़िंदगी को देखें। तो इसके ऊपर एक कुछ चंद अशरार हैं। किताबें तो जरिया है आदमी को आईना दिखाने का।
0: वाह।
1: किताबें तो जरिया हैं आदमी को आईना दिखाने का, बगरना वक्त कहाँ है आज किसी को समझाने का। बगरना वक्त कहाँ है आज किसी को समझाने का। हालात सबके हालात पड़े पर दिल न अपना पढ़ सके। सबके हालात पड़े पर दिल न अपना पढ़ सके। मोल बहुत कम है आज आदमी के बिक जाने का। मोल बहुत कम है आज आदमी के बिक जाने का। और हमें हमेशा ही कंप्लेंस रहती हैं, तो उन कंप्लेंस के ऊपर लिखा है
0: जी।
1: या धूप सही ना जाए और चांदनी में भी बदन जले। या धूप सही ना जाए और चांदनी में भी बदन जले। बहाना अच्छा ढूंढ लिया कुदरत को उलझाने का। बहाना अच्छा ढूंढ लिया कुदरत को उलझाने का। किताबें तो जरिया हैं आदमी को आईना दिखाने का, वरना वक्त कहाँ है आज किसी को समझाने का।
0: बहुत खूब। इसका अर्थात तो मुझे यही समझ आता है कि जिंदगी में हम जो भी कुछ करें, हमें निरंतर उसको करते रहना चाहिए, तब जाके ही हमें कुछ उपलब्धि हासिल हो सकती है जिंदगी में।
1: जी, मेरा मानना भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास ईमानदारी के होने चाहिए, और मेहनत आपकी हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। हर दिन ये सोच के होना चाहिए कि हाँ अगला दिन आपके लिए और अच्छा रहेगा, तो आपकी मेहनत उतनी ही और अच्छी होनी चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, कोई कविता आप हमें सुनाई है जिसमें श्रृंगार रस हो। आशा है आपके कविता से हमारे श्रोता भी सराबोर हो जाए। मैंने ये इसलिए चुना ताकि मैं आपको आपके युवा समय की ओर ले जाना चाहता हूँ।
1: जी भरत जी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन किया आपने मेरे लिए। कवि मन जो होता है वो, वैसे तो बहुत सारी विधाएं आती हैं उसमें, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जो लिखता हूँ वो ज़्यादातर मैं सैड पोइट्री लिखता हूँ। उदासी जो है, गम जो है, वो मुझे ज़्यादा विचलित करता है और अट्रैक्ट करता है, दोनों ही हैं। पर फिर भी गज़ल में लिखते हुए हमारे पास और भी विधाएं हैं, नज़म लिखते हैं हम, गीत लिखते हैं, दोहे लिखते हैं, तो ऐसे ही कुछ श्रृंगार रस की भी कुछ कोशिश की है। एक गीत है और उसको मैं सुनाना चाहूँगा, वो शायद आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ अच्छे से। आँखों आँखों में जो हमारी बात हुई, आँखों आँखों में जो हमारी बात हुई, बहुत खूबसूरत पहली मुलाकात हुई, बहुत खूबसूरत पहली मुलाकात हुई। मेरे बारे में सोचती हो तुम, मेरे बारे में सोचती हो तुम, तेरे बारे में रोज सोचता हूँ मैं, इतनी फुर्सत है इस मोहब्बत में, जाने कब सुबह कब ये रात हुई। आंखों आंखों में जो हमारी बात हुई, बहुत खूबसूरत पहली मुलाकात हुई। कितने एहसासों को हवा मिली, कितने एहसासों को हवा मिली, मुझको तेरा प्यार तेरी वफा मिली, यूं चलते हैं तेरे ख्याल मेरे साथ साथ, जैसे फूलों के संग खुशबू की बारात हुई, बहुत खूबसूरत सी पहली मुलाकात हुई। तेरा चेहरा मेरी निगाहों का है ठिकाना, तेरा चेहरा मेरी निगाहों का है ठिकाना, अब तेरे संग जीना ये जीवन है बिताना, अभी अभी इस दास्तां की शुरुआत हुई, बाद में सोचेंगे जीत हुई या हार हुई, आंखों आंखों में जो हमारी मुलाकात हुई, बहुत खूबसूरत पहली मुलाकात हुई, बहुत खूबसूरत पहली मुलाकात हुई।
0: बहुत खूब, हमने पूरे दर्शन किए आपके शब्दों के माध्यम से एक कवि का जो मन है। वाकई जैसे आपने कहा, आपका उपनाम वारिध है, एक बादल की तरह होता है, वो कब एक जगह से दूसरी जगह जाके लोगों के मन को छूता है।
1: जी,
0: बहुत खूब, बहुत खूब। आपके लिए हमारे देश की सुंदरता क्या मायने रखती है, क्योंकि आपका जन्म हिमाचल की वादियों में हुआ है, प्रकृति पर कोई कविता हो जाए?
1: जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैं क्योंकि साइंस का अध्यापक हूँ, साथ में पोइट हूँ, तो ये दोनों ही चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। खासकर मेरा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो भी नेचर और नेचर से रिलेटेड फिनोमिनाज को ही स्टडी करता है, उसमें हमारी ये सारी प्रकृति, यूनिवर्स, सब कुछ इसमें आ जाता है। दूसरा, हमारा जो देश है वो अद्वितीय है, अनुपम है, अतुलनीय है, तो इस जैसी पूरे विश्व में कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ इतने सारे भगवान जो हैं वो हमारे साथ रहे, उन्होंने अपना अवतार लिया, वो हमारे साथ उठे बैठे, हमारी तरह जीवन जिया, तो अतुलनीय भारत है। और हम इसको भारत माता कहते हैं, जो माँ है वो हर किसी के लिए ही सम्मान का नाम है, प्रतीक है, और उससे आगे कुछ कह नहीं सकते हम। तो मैं कुछ लाइनें हमेशा कहता हूँ कि अगर खौफ ना होता खुदा की रसवाई का, तो मैं माँ को हमेशा ही खुदा कहता। तो इसमें कोई डर नहीं है, माँ जो वो खुदा से भी ऊपर दर्जा रखती है। तो इससे मिलते हुए माँ से रिलेटेड एक मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अगर खौफ ना होता तेरी रसवाई का, तो ऐ खुदा मैं माँ को हमेशा खुदा कहता। मेरी माँ बचपन में मुझे किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी। ये तो हम सबकी लाइफ में माँ हमें लोरियाँ कहानियाँ सुना के ही बड़ा करती हैं, और हर हमेशा ही वो लोरियाँ, वो कहानियाँ हर किसी को अपने ताउम्र ज़िंदगी में याद रहती हैं, और हमें हौसला देती है जब भी हम कहीं पे मुश्किल हालात में हों, तो वो हमें माँ के कहे हुए शब्द, उनकी बातें हमेशा हमें हौसला देती हैं। उसी के ऊपर एक छोटा सा एक कोशिश है। मेरी माँ बचपन में मुझे किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी, दर्द भरी चोटों को मीठी लोरियों से सहलाया करती थी, हाथों की थपकियों से कच्ची नींदों को सुलाया करती थी। उसकी कहानियों में हमेशा जिन, भूत, दैत्य, परियां राजकुमार होते थे। राजकुमार कैसे परियों की रक्षा करता, जिन, भूतों, दैत्यों को धराशायी करता। बचपन के नन्हे सपनों में, तोतली जुबान के हौसलों में, बहादुरी के हजारों रंग भरती थी मेरी माँ बचपन में मुझे किस्से कहानी सुनाया करती थी। आज जिंदगी की भाग दौड़ में, शहर की अंधेरी रातों के शोर में, आशंकित धुंधली भोर में, जब कभी खुद को तन्हा पाता हूँ, अंधेरे राक्षस के फैले पंजों से घबराता हूँ, अपने ही कदमों की आहट से डर जाता हूँ, माँ के कहे वो बचपन के किस्से कहानियाँ लोरियाँ दोहराता हूँ, और यकीन मानिए नाकामियों के दौर में भी नहीं घबराता हूँ मैं, क्षण भर भी नहीं घबराता हूँ मैं।
0: जी, आपने ये कविता सुनी माँ के ऊपर, और इस समय हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार वारिद साहब हैं, जिनके पिताजी का नाम है श्री रोशनलाल लखनपाल और माताजी का नाम है श्रीमती लीला देवी। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ये कविता पढ़ रहे थे तो जैसे आपके मन में आपकी माँ रही होगी पढ़ते पढ़ते, वैसा ही मुझे भी अनुभव हो रहा था कि मेरी माँ भी इस समय मेरे साथ है। और आई थिंक हमारी जिंदगी में माँ से बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि माँ भी भगवान ही है। एक बार भगवान को भी रश्क हुआ कि आप माँ से ज्यादा प्यार करते हो और मुझसे नहीं।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: उसने उसको जवाब दिया कि आपने ही माँ को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि आप हर जगह नहीं हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि जब माँ का नाम आता है तो मैं थोड़ा सा भावुक होता हूँ, और हर कोई व्यक्ति माँ के लिए हमेशा भावुक रहता है, और हम चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, और सारी जिंदगी माता पिता के कर्मों के अंदर ही हमारी छुपी होती है। संगीत आपको कितना सुकून देता है, और कौन सा गाना ऐसा है जो आप आमतौर पर गुनगुनाते हैं?
1: संगीत हमारी जिंदगी में, खासकर भारतीय जो समाज है उसकी जिंदगी में रच बस चुका है, वो उसकी रग रग में रहता है, और मुझे जो सॉफ्ट मौसिकी होती है वो ज़्यादा प्यारी है। अभी जैसे आपने पूछा कौन सा संगीत जो है या कौन सा गीत जो अब आपके करीब है, तो अभी जो मेरे मन में आ रहा है, मेरे ख्याल में आ रहा है, वो है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया हारा आके हारे।
0: चलिए एक बार फिर उसी गांव के राहों पर चलते हैं और सुनाते हैं आपको और अपने श्रोताओं को ये गाना गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी। हमारी बातचीत चल रही है डॉक्टर सुरेश कुमार वारिद साहब से। बातों का सिलसिला यूं ही जारी है। पूछते हैं डॉक्टर साहब से, एक बार आपकी शिक्षा ग्रहण के सफर की ओर आते हैं, आपने देश के विभिन्न हिस्सों से शिक्षा ली है, कैसा अनुभव ये रहा है? और इसके साथ ही एक और प्रश्न करता हूं, कई सारी पुस्तकें भी आपने लिखी हैं जो प्रकाशित भी हुई हैं, तो कृपया विस्तार में इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए।
1: धन्यवाद भारत जी। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे पढ़ने का मौका मिला और मेरे परिवार ने पूरा साथ दिया। मुझे कभी नहीं कहा कि हाँ आप

0: ये बक्सा। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया। बीएड मैंने श्रीनगर यूनिवर्सिटी से किया, कॉलेज मेरा जम्मू में था, और बहुत अच्छे लोग मिले। जो हमारे टीचर थे वो कश्मीरी पंडित थे, और उनका जो कॉलेज था गांधी मेमोरियल कॉलेज
1: जी
0: वो भी
1: जी
0: उन्हीं
1: मैंने
0: का
1: कॉलेज,
0: था। हालांकि वो विस्थापित तो उसमें रहते थे, तो उनका भी जो उनके साथ हुआ दुख दर्द उसको भी बहुत नज़दीक से जानने का मौका मिला। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर कोर्स रहा एमएससी फिजिक्स फिजिक्स का। तो वहाँ पे भी देहात की लाइफ, यूपी उत्तर प्रदेश की लाइफ, वहाँ का संस्कृति, वहाँ का कल्चर देखने का मौका मिला। और उसके बाद फिर मैं जॉब में आ गया, और जॉब के साथ साथ पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं।
1: जी
0: मैंने एमएड किया डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से, दोबारा से जम्मू यूनिवर्सिटी से किया, और फिर उसके बाद एमफिल किया विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सेलम तमिलनाडु से। और 2002 से लेके 2010 तक मैंने रेगुलर जॉब किया, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया।
1: जी
0: फिर मुझे लगा कि हाँ, अभी मुझे कुछ और 1-2 साल और पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन कितना भी आप अचीव करते हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, अभी कुछ कमी रहेगी। तो फिर मैं अपना पीएचडी का कोर्स करने के लिए जेपी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश में रेगुलर मोड से मैंने वो किया। तो ये मेरी एजुकेशन का था। अभी भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ।
1: अगले
0: और
1: प्रश्न पर जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरे माहौल में जाके पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई पे तो इसका कोई असर नहीं रहता?
0: नहीं, पढ़ाई तो मेरा मानना है कि और अच्छे से हो पाती है आपको, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है,
1: जी
0: इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी भाषाएं, तो आपको समझ मिलती है।
1: जी
0: अगर आप कहीं एक ही जगह पे रह के पढ़ते हैं लिखते हैं, तो आपको और लोगों से घुलने मिलने का मौका नहीं मिलता। दूसरा, अगर आप अलग स्थानों पे रहते हैं, तो वहाँ पे जो एजुकेशन के साथ आप साथ में जो आपके पास समय होता है, वो वहाँ की परिस्थिति परावेश को समझने का होता है। तो दोनों ही चीज़ें आपको और एनरिच करती हैं,
1: अनुकूल रहती
0: आपके
1: हैं।
0: अनुभव को बढ़ाती हैं।
1: जी
0: और जो मुश्किलें आती हैं, जो छात्र जीवन की मुश्किलें हैं, वो आपको स्ट्रांग बनाती है, आपको मैनेज करना आता है। लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, वो सीख पाते हैं आप। तो ये मेरे मानना है कि आपको और अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को ग्रो करने का।
1: तो जब आपने पीएचडी किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आपको फिजिक्स में मिला, तो आपका विषय उसमें क्या रहा, जो आपका अपना जो उसमें थीसिस था वो क्या रहा?
0: हाँ, मेरा थीसिस जो था वो एक्चुअली बेसिकली केमिकल बाथ डिपोजिशन से थिन फिल्म्स बनाने का था, जो कि
1: अच्छा,
0: हमारे सेंसर्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते
1: लगती
0: हैं।
1: हैं।
0: यस, और इसमें मेरे 9 शोध, मेरा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए हैं।
1: जी, जिसके ऊपर आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी दिया गया है। तो जब आपको डॉक्टर सुरेश कुमार बुलाया गया, तो कैसा अनुभव था वो?
0: मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के लिए अच्छी बात थी, मेरे लिए तो बस वो कैजुअल हो गया। जब तक नहीं था, आपके पास कोई चीज़ नहीं होती तब तक आपकी दौड़ होती है, जैसे वो
1: जी
0: मिल जाता है आपके लिए वो, हाँ ठीक है, मेहनत किया कुछ मिला, लेकिन वो इतना नहीं है कि आपसे बड़ा या आपके समाज से बड़ा है। और परिवार के लिए बहुत है, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, तो उनको ज़्यादा खुशी होती है सिवाय मेरे।
1: जितने युवा श्रोता हमें इस समय सुन रहे हैं, क्या उनको हम ये बता सकते हैं कि क्या शॉर्टकट कहीं पर कोई रास्ता बनता है जिंदगी में, जब हम इस लेवल तक अपनी तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं?
0: नहीं, अचीव करना कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपकी लगन है, डेडिकेशन है, तो शॉर्टकट ही है। अदर वे में अगर आप शॉर्टकट ढूंढते हो, वो लॉन्ग रन में वो लॉन्ग रन हो जाते हैं,
1: जी
0: लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपकी जो इंटरेस्ट है, और अगर आप उसको डेडिकेशन से करते हैं, तो देर इज ऑलवेज शॉर्टकट, आपको हर एक चीज़ मिलेगी।
1: मतलब एक निश्चय होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहां तक है,
0: जी हाँ,
1: लक्ष्य जो है
0: बिल्कुल,
1: वो निश्चित होना
0: जी
1: चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल। वरना जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, तो हर कायनात का हर जर्रा जर्रा आपको उसको मिलाने में लगा रहता है, तो ये वो
1: जी
0: मिल जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अचीव ना कर पाए।
1: तो दूसरा क्वेश्चन था मेरा, आपके प्रकाशित हुई हैं किताबें।
0: जैसे एक स्टेज के ऊपर, एक समय के आने के बाद लगा कि हाँ, अब मुझे अपना जो पोएटिक वर्क है वो भी पब्लिश करना चाहिए। इसमें कह सकते हो आपके जो मैंने रिसर्च में सीखा कि हाउ टू पब्लिश अ थिंग, तो उसी को आगे मैं बढ़ाया, फिर अपनी गज़ल को मैंने पब्लिश करना स्टार्ट किया।

0: तो पहले तो मैंने उनको डिफरेंट समाचार पत्रों में भेजा, जिसमें दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, पंजाब केसरी है, और इसमें खासकर जो है जिनका मुझे सहयोग मिला वो वर्तमान अंकुर, नोएडा से प्रकाशित होता है ये। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप पोइटिक माइंड के लोग हैं, जो कवि हैं हमारे, नवोदित कवि हैं और जो कहानीकार हैं, अगर वो भी पब्लिश करना चाहें तो दैनिक वर्तमान अंकुर बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म देता है। उनका फुल साप्ताहिक पेज आता है, साहित्यिक पेज आता है, और वो नए कलाकारों को ही पब्लिश करते हैं।
1: प्रोत्साहित करते
0: तो
1: हैं,
0: या उन्होंने मुझे बहुत
1: सहयोग दिया।
0: सहयोग दिया और वो मेरी रचनाओं को प्रकाशित किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ संयुक्त गजल संग्रह पब्लिश किए, जिसमें नए पल्लव करके एक पटना से प्रकाशित होता है, उसमें नए पल्लव 4 करके, और एक बादे नौबहार वर्तमान अंकुर का ही एक संयुक्त काव्य संग्रह था, उसमें मेरा काम जो है वो पब्लिश हुआ। संयुक्त गजल संग्रह पब्लिश करने के बाद एकल संग्रह की तरफ मेरा ध्यान गया, तो मैंने हरियाणा साहित्य अकेडमी पंचकुला से मुझे प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई, और उसमें मैंने अपनी पहली जो गजल संग्रह, मेरी पुस्तक तेरी याद का दरिया, ये मैंने पब्लिश किया। हरियाणा
1: जो
0: साहित्य
1: इंडिपेंडेंट जो जो
0: इंडिपेंडेंट, इसमें मेरी 132 के आसपास गजलें प्रकाशित हुई हैं। मैं इसमें हरियाणा साहित्य अकादमी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सहयोग राशि दी।
1: हम आपसे एक गजल इस प्रकाशित जो आपकी पुस्तक है इसमें सुनना चाहेंगे, बट उसके साथ जुड़ता हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा। गजल आपके लिए कितना सुखद एहसास देती है? विभिन्न समाचार पत्रों में जैसे आपने कहा कि आपके लेख छपे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक गजल आप हमें सुनाएं, हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं।
0: जी धन्यवाद। गजल के बारे में जैसे आपने पूछा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जैसे हमारे लाइफ में हमारे फैमिली मेम्बर आते हैं या हमारे शौक आते हैं, तो ऐसी ही गजल जो है वो मेरी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। ये कब कहाँ से निकल जाए, या कब कोई विचार आ जाए, कब आपका मूड जो है वो स्विंग कर जाए, तो उसी के लिए अपने आप शब्द अपने आप मिल जाते हैं और वो गज़ल बन जाती है। और वैसे भी गज़ल हमारे हर किसी की ज़िंदगी में है, कोई पढ़ पाता है कोई नहीं
1: कोई
0: पढ़
1: नहीं पढ़
0: पाता,
1: पाता
0: लेकिन गज़ल हमारे साथ साथ चलती है। और
1: इसीलिए डॉक्टर साहब हमने आज आपको बुलाया है कि हम आपके मुख से एक गजल सुने। आपने कहा कि गजल हर एक के आसपास है, हम तो आज तक नहीं देख पाए, तो हम चाहते हैं कि आप एक गजल हमें अपनी प्रकाशित पुस्तक से कोई सुनाएं।
0: एक गज़ल आप सुने
1: जी
0: और हमारे श्रोता भी इसका एंजॉय करें।
1: जी
0: ये कौन मेरी जानिब झुक गया, ये कौन मेरी जानिब झुक गया, कोई आसमान से ऊंचा उठ गया। ये कौन मेरी जानिब झुक गया, कोई आसमान से ऊंचा उठ गया, ये जो तितलियां मंडराने लगी हैं, ये जो तितलियां मंडराने लगी हैं, फिर नया पौधा कोई उग गया। जो तेरे हैं जमीनों आसमां ए खुदा, जो तेरे
1: तेरे
0: हैं
1: हैं
0: जमीनों
1: जमीनों आसमां
0: आसमां ए
1: ए खुदा,
0: खुदा, तेरे होते कोई कैसे यहाँ लुट गया, तेरे होते कोई कैसे यहाँ
1: लुट
0: लुट
1: गया।
0: गया। आंसुओं के दाग हैं मेरे दामन पे, आंसुओं के दाग हैं मेरे दामन पर, बीच सहरा दरिया जैसे रुक गया, बीच सहरा दरिया जैसे रुक गया, ये कौन मेरी जानिब झुक गया। मेरी मेहनत इस तरह आई नज़र, मेरी मेहनत इस तरह आई नज़र, धुलते धुलते सारा पैराहन धुल गया। 31 उठे है हर घड़ी हर लम्हा, 31 उठे है हर घड़ी हर लम्हा, कोई कांटा वक्त के सीने में मुड़ गया, कोई कांटा वक्त
1: वाह,
0: के सीने में मुड़ गया। मेरे लड़खड़ाने पर यूं तेरा हाथ बढ़ाना, मेरे लड़खड़ाने पर यूं तेरा हाथ बढ़ाना, दिल का सारा राज बारिद खुल गया, दिल का सारा राज बारिद खुल गया, ये कौन मेरी जानिब झुक गया, कोई आसमान से ऊंचा उठ गया।
1: बहुत खूब बहुत खूब। और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो आसपास गजल हो हम उसको देख पाएं, पर हम कवि तो नहीं है तो शायद संभव नहीं है। हम गजल की बात कर रहे हैं तो संगीत की बात हम अभी कर रहे थे। संगीत और शायर आपस में जुड़े हैं, तो गजलों के संदर्भ में आपका सबसे पसंदीदा गजल गायक कौन है? तो हम चाहते हैं कि श्रोताओं को और आपको भी आपकी कोई मनपसंद गजल हम सुनाएं।
0: जी, जैसे हम जितने भी हम इंडियन हैं, हमें जो गज़ल सुनना या लिखना या सीखना सिखाई, वो मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय जगजीत सिंह जी, वो हर किसी की लाइफ का हिस्सा हैं। और इसके अलावा मैं मेहंदी हसन साहब को मैंने खूब सुना है, गुलाम अली साहब को खूब सुना है
1: जी।
0: और अभी जैसे आप पूछा है कि यहाँ कोई गज़ल, तो एक कैफ बफाली जी हैं, उनका एक गज़ल है जो जगजीत सिंह ने गाया है
1: जी।
0: कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। मैं चाहता हूँ कि ये गज़ल आप
1: आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद की ये गज़ल। कौन

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। आप आज सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और आज हमारे आमंत्रित मेहमान स्टूडियो में है डॉक्टर सुरेश कुमार वारिद साहब। डॉक्टर साहब, आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है तेरी याद का दरिया, जब आपने इसका नामकरण किया, क्या इसके बारे में आपने कुछ सोच के रखा या वैसे ही ख्याल आएगा और हम चाहते हैं कि इसमें भी कोई और कविता हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचाए?
1: जी, इसका नामकरण के ऊपर तो कोई ऐसा नहीं था कि एक नाम देना था, तो ये जितना भी कुछ लिखा गया है, ये जहाँ तक मुझे याद है ये 98 के आसपास से इसमें जो कुछ पहले लिखा, शुरुआती दिनों में लिखा, वो चीज़ें भी हैं
0: जी।
1: उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कुछ मैच्योर हुए, वो चीज़ें भी हैं, और रिसेंटली जो भी काम लिखा था
0: वो
1: सारा कुछ भी इसमें शामिल किया था
0: जी।
1: तो ये उस दरिया की ही तरह था कि हाँ, आप शुरू से लेके अभी तक चल रहे हैं, आप एक यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें आपने जो जो आपके पड़ाव आए वो सारे इंक्लूड किए। और ये जो किताब बनी है ये कोरोना काल में ही बन पाई है। अगर शायद कोरोना ना आता तो शायद हमें ये मौका ना मिलता, क्योंकि बाकी दिनों तो हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इतना समय नहीं मिल पाता था। और इसमें खासकर एक हमारे हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त जी, उनका बहुत सहयोग रहा, उनकी मोटिवेशन से, उनके प्रोत्साहन से ये किताब बन पाई। और जैसे आपने चाहा कि एक किस्में से
0: जी,
1: तो एक किस्में से छोटी सी एक गजल है, उसको मैं कहना चाहूंगा
0: जी।
1: मैं चाहूंगा दर्शक हमारे से पसंद करें
0: जी।
1: मौजू इस तरह से है, बेवजह खुद को ना भटकाया करो, बेवजह खुद को ना भटकाया करो, कभी तो वक्त रहते घर जाया करो। बेवजह खुद को ना भटकाया करो, कभी तो वक्त रहते घर जाया करो। हर बाग का बागवां हो जरूरी नहीं, हर बाग का बागवां हो जरूरी नहीं, ये सब तितलियों को समझाया करो। नीलाम हो जब चौराहों पे जिंदगी, नीलाम हो जब चौराहे पे जिंदगी, तुम खड़े खड़े डूब के मर जाया करो। हर मियार का होता है अपना निज़ाम, हर मियार का होता है अपना निज़ाम, बेवाक तकल्लुफ से तुम ना आया करो। लोग आग लगाकर देखते हैं तमाशे, लोग आग लगाकर देखते हैं तमाशे, जब डरने की बात हो डर जाया करो, बेवजह खुद को ना भटकाया करो। उसकी बात मान लो अभी वो जज्बाती है, उसकी बात मान लो अभी वो जज्बाती है, बाद में चाहे उसे उंगलियों पे नचाया करो, बाद में चाहे उसे उंगलियों नचाया करो। तुझे उड़ा ले जाएंगे आंसुओं के बवंडर, तुझे उड़ा ले जाएंगे आंसुओं के बवंडर, इन तूफानों से वारिद लड़ जाया करो, इन तूफानों से वारिद लड़ जाया करो, कभी तो वक्त रहते घर जाया करो, बेवजह खुद को ना भटकाया करो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो ये कहता हूँ कि मन तो करता है आपको ऐसे ही सुनते रहें, मगर समय इजाजत नहीं दे रहा है। जाने से पहले ये जानना चाहूंगा कि जिन गुरुजन से आपने सीखा है, उन गुरुजन को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: प्रथमा गुरु माता
0: जी।
1: तो मैं आज जहाँ पे भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, उसमें मेरी माता का बहुत बड़ा योगदान है
0: जी।
1: हम बिल्कुल ग्रामीण परावेश से हैं, मेरी माँ कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हार्डली एक या दो क्लास तक गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे लगभग मेरी मैट्रिक तक उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मुझे टास्क दे देते थे पढ़ने को, साथ में बैठे काम करते रहते थे और मैं पढ़ता रहता था, गुनगुनाता रहता था, उनको सुनाता रहता था। तो प्रथमा गुरु माता, द्वितीय गुरु जो हमारे गुरु होते हैं, गुरुजन होते हैं, तो मैं फिजिक्स में PhD तक पढ़ पाया, तो इसमें हमारे एक PC पटियाल सर थे ग्रेजुएशन के, उनका बहुत योगदान रहा है। फिजिक्स क्या होता है, कैसे समझना है, कैसे कंसेप्ट को रियलाइज करना है, तो ये उन्होंने सिखाया
0: जी।
1: तो मैं जितने भी मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग हैं तो उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका भी, भारत जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं अम्बाला में पिछले लगभग 18 साल से हूँ और अम्बाला में मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला, बहुत अच्छे अच्छे लोग, उम्दा लोग मिले, तो अभी भी मेरी कर्म भूमि यही है। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे मिले उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, रेडियो वितस्ता का, इसकी टीम का, हमारे साथ जो हैं दीपक जी और सेजल जी हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने सुना, इन्होंने सहयोग दिया और ये कार्यक्रम बन पाया। और अंत में चलते चलते एक गीत है, गजल की ही तरह है, मोहम्मद रफ़ी साहब का है। ये किसी फिल्म में पिक्चराइज नहीं हुआ, मनमोहन जी का संगीत है, अलग से एक एल्बम है, बहुत पुरानी है। उसका एक दो लाइनें मुझे याद हैं, तो मैं चाहूँगा ये गाना आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। वाक्य है कि कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, पाऊंगा हर शख्स मैं कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर।
0: इन्हीं शब्दों के साथ, आपके इन अच्छे विचारों के साथ हम इस कार्यक्रम को करते हैं समाप्त। और मैं चाहूंगा आप सभी से इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी। आज के मेहमान थे डॉक्टर सुरेश कुमार वारिद, रिकॉर्डिस्ट व एडिटर दीपक कश्यप, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशक भारत सपोरी। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

महके तो भंवरा वहीं जाए, दिल का पपीहा तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: सुनन खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन, अर अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन, अर मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

जय श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आप सभी को पता है कि कल मौसम अच्छा नहीं था। कल हमारी एरिया में एक बिजली भी गिरी है। अब मुझे लगता है कि हमारी ट्रांसमीटर में और हमारी सिस्टम में कुछ खराबी आई है, जिस वजह से आप फ्रीक्वेंसी पर ये ब्रॉडकास्ट नहीं सुन पा रहे हैं, पर मोबाइल पर आप निरंतर हमारे प्रसारण को सुन सकते हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं तो आपको इस समय मोबाइल पर सुनना होगा, या तो आप हमारी वेबसाइट radiovitasta.com से सुन सकते हैं, या ब्राउजर ऐप webplayer.radiovitasta.com से आप हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। चाहे आप सफर में हैं, चाहे आप घर पे हैं, पर कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए फ्रीक्वेंसी पर जो हमारी प्रसारण है वो बाधित है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए और फ्रीक्वेंसी पर और साथ में हमारे मोबाइल पर भी प्रसारण जारी रहेगा। फिलहाल आप हमारे प्रसारण मोबाइल पर ही सुन पा रहे हैं, तो मोबाइल की तरफ स्विच कीजिए। हमारी वेबसाइट ही आपका रेडियो है। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है radiovitasta.com। वहाँ पर आप इस वेबसाइट पे जाइए, उसमें रेडियो प्लेयर है, उसको प्ले कर दीजिए और आपको हमारा जो प्रसारण है वो आप सुन पाएंगे, आपको प्रसारण मिल पाएंगे। उम्मीद है कि आप इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, सुनते रहो अपने।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ। ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मेडिकल ऑफिसर आईएसएम हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुरेश शर्मा से की गई भेंटवार्ता। आपकी भेंटवार्ता का विषय है आयुर्वेद, बवासीर कारण और उपचार।
2: डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
3: थैंक यू
2: डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। ये क्या है ये आयुर्वेद?
3: आयुर्वेद की पहले मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानवजत्स यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आयुर्वेद ये वो ग्रंथ है, ये वो विज्ञान है जिसमें आयु को दीर्घ करने की और आयु को स्वस्थ रखने की विधियां बताई गई हैं। इस सारे ग्रंथ को आयुर्वेद कहते हैं
2: जी।
3: आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ भी आयु से संबंधित वेद और उस पर आधारित हम जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा अपने स्वस्थ शरीर को और अधिक दीर्घायु बना सकते हैं उसी को आयुर्वेद कहते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है?
3: आयुर्वेद का जो अवतरण है या आयुर्वेद का इतिहास हम कहें तो आयुर्वेद की शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों के इलाज के लिए उस समय जो पद्धति मौखिक रूप से अपनाई या अपने शिष्यों में बांटी उसको आयुर्वेद के द्वारा ही अवतरण हुआ। ब्रह्मा से अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों से इंद्र को और इंद्र से धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया और धन्वंतरी से आगे चलकर आयुर्वेद लिखित रूप में हमारे सामने आया। उससे पहले तक आयुर्वेद मौखिक चिकित्सा पद्धति के लिहाज से ही इस्तेमाल में आता था।
2: कितने साल पुरानी की बात है?
3: आयुर्वेद का इतिहास कोई 5,000 पुराना है
2: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं ये कहां से मिलती हैं, कैसे तैयार होती हैं?
3: आयुर्वेद दवाइयों का जो मूल रूप से आधार है वो है औषधियां, जिनको कहते हैं हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों के अलावा आयुर्वेद की कुछ औषधियों का आधार जानवरों से भी है
2: जी।
3: कुछ समुद्र से कुछ चीज़ें जो निकलती हैं उनसे भी उनका आधार है। हमारे जो कुछ धातें हैं जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, जिंक है, एल्युमिनियम है, इन धातुओं का भी समावेश आयुर्वेद की औषधियों में किया गया है। और आयुर्वेद को जड़ी बूटियों तक ही सीमित करना हमारा लक्ष्य नहीं है। आयुर्वेद को काफ़ी विस्तार पूर्वक औषधियों के द्वारा जांगम द्रव्यों और उद्विज द्रव्यों, जिसमें जानवरों से तैयार की हुई औषधियां और जड़ी बूटियों से तैयार की हुई औषधियां, सभी का आयुर्वेद में समावेश होता है। आयुर्वेद इस सिद्धांत पर चलता है कि जहां जो रोग उत्पन्न होता है उसकी औषधि भी वहां पर ही ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। तभी तो जो जड़ी बूटियां हमारे आसपास में पैदा होती हैं उन्हीं जड़ी बूटियों से उस इलाके में जो प्रचलित बीमारियां होती हैं उन्हीं का इलाज उससे हो जाता है
2: जी।
3: तो आयुर्वेद का जो चिकित्सा सिद्धांत है ये बिल्कुल प्रकृति से मेल खाता है और चूंकि प्रकृति से मेल खाता है इसलिए औषधियों में दुष्प्रभाव बहुत कम है।
2: अच्छा, ये जो जड़ी बूटियों की बात आपने की, कैसे रिसर्च होती है, कैसे तहकीक होती है कि ये वाकई जड़ी बूटी है जो दवाइयों के काम में लाई जाती है?
3: हाँ, ये तो अब रिसर्च की बात आजकल चूंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, रिसर्च वाकई हो रही है। हमारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स जैसे जम्मू की रीजनल रिसर्च लेबॉरेटरी है, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रीजनल रिसर्च लेबॉरेटरीज और भी हैं हमारी 5-6 जगह से, त्रिवेंद्रम में है, गुवाहाटी में है। तो आजकल रिसर्च लेबॉरेटरीज में जितना भी काम चल रहा है वो सारा काम हर्बल ड्रग्स पर चल रहा है, जो आयुर्वेद की औषधियां हैं उन्हीं पर चल रहा है। और ये हर्बल ड्रग्स जो हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 5,000 साल पहले जिस औषधि को, जिस विशेष बीमारी के लिए
2: इजाद किया है।
3: निर्धारित किया है कि कौन सी औषधि किस बीमारी में कैसे उपयोग में लाई जाती है, आज जो रिसर्च से सामने आ रहा है वो बिल्कुल उसका ही अनुरूप है।
2: जी
3: और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऋषि मुनियों की ये व्यापकता देखी जाए, उनकी ये दूरदृष्टि, जो उनकी ऐसी दूरदृष्टि ना कहें, ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने औषधियों के गुण, उनमें जो रस है, उनका जो विपाक है, जैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर वो काम करती हैं बीमारी के प्रति, तो वो उनकी प्रामाणिकता आज साइंस भी वैसी की वैसी ही सिद्ध कर रही
2: मैं आपसे यही जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि
3: है।
2: आजकल के इस मेडिकल साइंस में आयुर्वेद का कितना असर है, इनकी दवाइयों का कितना असर है?
3: आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो वाकई जिसको हम कहेंगे मिराकुलस हैं। आयुर्वेद किन कारणों से पिछड़ रहा है,
2: चमत्कारी जिसे आप कहते
3: हाँ
2: हैं।
3: चमत्कारी, हाँ आयुर्वेद किन कारणों से पिछड़ रहा है, ये कारण कुछ और हैं। अगर 5,000 साल पुरानी पद्धति आज तक चल रही है तो उसमें कुछ है, तभी वो पद्धति आज तक हम लोगों में है और हम लोग उसको अपना भी रहे हैं और इतना उसका फायदा ले रहे हैं कि हमारी जो सही तौर पर जो बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के मुतलक हमारा जो तंत्र है वो उसको उतनी उन्नति के साथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं तो जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, कनाडा में आजकल आयुर्वेद के नए सेंटर्स खुले हुए हैं और
2: जी
3: उन केंद्रों में हमारे कई विशेषज्ञ, मेरे साथ पढ़े हुए मेरे जो सहपाठी हैं, वो कई बार एज गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर वहां जाकर अध्ययन का काम करवा रहे हैं।
2: यानी वहां पर आयुर्वेद का असर है,
3: हाँ वहां पर,
2: इनकी
3: और
2: दवाइयों का
3: अगर,
2: असर है।
3: हाँ और अगर भारतवर्ष जहाँ आयुर्वेद का उद्भव हुआ, जो आयुर्वेद का जनक है, वहां पर आयुर्वेद की जो दुर्गति हो रही है, दुर्गति तो हम नहीं कहेंगे, दुर्गति ये नहीं है कि आयुर्वेद की औषधियां जो हैं वो काम नहीं करती हैं। आयुर्वेद की जो औषधियां हैं वो बीमारी को जड़ से नहीं दूर करती हैं, प्रचलन थोड़ा सा बदल गया है। वो प्रचलन बदलने से आयुर्वेद को थोड़ा रिवर्स गियर लगा है, अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, भारतवर्ष में भी आयुर्वेद के प्रति जो पहले वाली भावना थी वो नहीं रही है। लोगों में जैसे जैसे पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, आयुर्वेद की तरफ उनकी जो स्वीकार उक्ति है वो ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनके दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा हैं।
2: डॉक्टर साहब, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि साइड इफेक्ट्स के बारे में, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में एक गुंजाइश हमने रखी है, अगर डॉक्टर सुरेश शर्मा की कोई आपकी पसंद का कोई गीत अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए, हम भरपूर मौका आपको देंगे।
3: हाँ मेरी पसंद का पहला गीत है ये फिल्म हमराज से, ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो,
2: बिल्कुल,
3: गमों का
2: बी आर
3: दौर भी आए
2: जी
3: तो सर उठा के जियो।
2: बी आर चोपड़ा साहब की
3: हाँ
2: फिल्म
3: बी आर
2: रही है
3: चोपड़ा,
2: और सुनील दत्त
3: सुनील
2: पर,
3: दत्त थे उसमें।
2: जी
3: हाँ
2: जी जी ये आपकी पसंद का गीत हम अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं।

0: डॉक्टर श्री शर्मा हमारे साथ हैं, मेडिकल ऑफिसर आईएसएम हेल्थ डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि साइड इफेक्ट्स की बात हम कर रहे थे, क्या लगता है आपको? हमने सुना है कि जो आयुर्वेद में दवाइयों का इस्तेमाल होता है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्या
1: हाँ
0: ये सही है?
1: बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उचित है। बाकी ये बात नहीं है कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं है। आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो तरीका हमारे शरीर के अनुरूप जो विकृतियाँ पैदा हुई हैं उनको ठीक करने का है। आयुर्वेद में जो बीमारियों का कारण है वो हम वात पित्त और कफ जो तीन दोष होते हैं शरीर के, उनके आधार पर उनकी कमोपेशी को देखकर जो औषधि है वो निर्धारित करते हैं। चूंकि जो आयुर्वेदिक दवाइयों का आधार है वो प्राकृतिक हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, कुछ धातुएं होती हैं, कुछ जांगम द्रव्य होते हैं, कुछ जैसे हम ये जानवरों से लेते हैं, जैसे गोरोचन एक द्रव्य आता है, जैसे मछली का तेल है, इनका जो उद्भव स्थान है वो है जांगम, वो जानवर है।
0: जी
1: तो चूंकि ये सारी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और प्रकृति से जुड़ी होने के कारण इंसान भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है,
0: बिल्कुल
1: और चूंकि वो चीजें अलग नहीं है इसलिए वो चीजें हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव कम करती हैं। ये बात नहीं कि प्रभाव उनका दुष्प्रभाव नहीं होता है, दुष्प्रभाव होता है अगर उनकी जो मात्रा है वो बहुत अधिक इस्तेमाल कर दी जाए। आयुर्वेद में कुछ विष भी हैं जैसे भत्सना वगैरह है, जे अतीस है, फिर रत्ती है, ये
0: जी
1: विष औषधियाँ हैं,
0: जी
1: कुचला है, लेकिन ये विष औषधियाँ ऐसे तरीके से इस्तेमाल की गई हैं कि इनका जो विषाक्त गुण है उसको दवाइयों में तैयार करने से पहले नाश किया जाता है और
0: यानी
1: वो
0: यानी ये हम मान के चलें कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स भी हैं,
1: साइड इफेक्ट्स होते हैं
0: लेकिन
1: अगर उनका गलत तरीके से इस्तेमाल
0: जी
1: हो जाए।
0: जी
1: बजाय इसके भी जैसे हम देखते हैं एलोपैथी दवाइयों में अगर एक बीमारी ठीक करेगी तो वो दूसरी उसको भी लगा देगी। अगर
0: बिल्कुल
1: हम एनल्जेसिक खाते हैं तो वो गैस आपको बढ़ाएगी, चाहे आप विद इन नॉर्मल लिमिट इस्तेमाल करें, जो डोज है उसकी उसमें भी इस्तेमाल, तब भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी सुनते हैं कि मैं जब आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे बीमारी को दूर करने में इसका असर होता है, यानी समय लगता है, अगर कोई बीमारी है ठीक होने में समय लगता है।
1: हाँ ये तो बात ठीक है, ये जो समय लगने वाली बात है इसके पीछे जो आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत है वो कारण है उसका। आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो चिकित्सा रोग की नहीं रोगी की जाती है, और रोगी में जो उसका इम्बैलेंस बना हुआ है, जो हम बॉडी की तीन एंटाइटीज लेते हैं, तीन जिस पर हमारा शरीर वो है शरीर बना हुआ है वात पित्त कफ, उसको जब सम अवस्था में लाना है तो चूंकि हम इलाज रोके करते हैं, रोगी की अवस्था, रोगी की शरीर की शक्ति, रोगी की आयु, स्थान, भेद,
0: उसी
1: इन
0: के
1: सब
0: आधार
1: चीजों के
0: पर
1: आधार पर जब रोगी का इलाज किया जाता है
0: तो समय
1: तो
0: लगता है।
1: समय लगेगा।
0: जी,
1: ये जो हम दूसरी दवाइयाँ को जल्दी से असर करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के इलाज नहीं करती हैं। हम एक ही चीज को बीमारी को देकर इलाज करते हैं तो उससे दवाइयों का दुष्प्रभाव ज्यादा हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, पाइलस की बात करना चाहेंगे, आम बीमारी है, और ये पाइलस जो है आयुर्वेद में, इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए? क्या वाकई आयुर्वेद में इस बीमारी का इलाज है?
1: आजकल
0: पहले हम पाइलस को आप थोड़ा सा डिफाइन करिए,
1: ठीक
0: पाइलस क्या है?
1: ठीक पाइल्स तो इंग्लिश में कहते हैं, बीमारी बवासीर को कहते हैं, जो आयुर्वेद में बवासीर का उल्लेख है वो अर्श के नाम से है, और अर्श का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है एक आरी के काटने के समान पीड़ा होना, अर्श, और बवासीर अर्श पाइल्स ये बीमारी ऐसी है जिसमें मरीज को पखाने के वक्त तो उसको इतनी आरी के समान काटने की दर्द होती है जो असह्य होती है, और उस असह्य दर्द के आधार पर ही इस बीमारी का नाम अर्श रखा हुआ है। जैसे बाकी आम बोल चाल में हम इसको बवासीर भी कहते हैं, पाइल्स भी कहते हैं, और एलोपैथी हम इसको हेमराइड्स कहते हैं। नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन जो इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है वो हमारा आहार विहार है।
0: यानी खाने पीने की।
1: खाने पीने का जो हमारा आहार विहार है वो सबसे बड़ा कारण है इस बीमारी को फैलाने का।
0: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये पाइलस जो है, ये बीमारी जो है, ये कोई इसकी उम्र होती है, किस उम्र से इसकी शुरुआत होती है, क्या ये हर एक में होती है?
1: हाँ, पाइल्स की वैसे तो उम्र जो 30 साल से ऊपर ही होती है,
0: जी
1: और औरतों और मर्दों में बराबर की बीमारी होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि औरतों में ज़्यादा होगी या मर्दों में ज़्यादा होगी, लगभग बराबरी होती है। हाँ, इस बीमारी के बढ़ने के कुछ कारण हैं। किन लोगों में ये क्यों ज़्यादा होती है, किन लोगों में क्यों कम रह जाती है,
0: वो जरा
1: तो
0: हमें
1: वो
0: बताइए
1: जो,
0: आप
1: हाँ, वो
0: मुझे।
1: जो कारण है वो एक तो सबसे बड़ा कारण है आहार, जो हमारा खाने पीने का, खाने पीने की रूटीन है, उस पर बीमारी के बड़े कारण छुपे हुए
0: यानी ये
1: हैं।
0: मसालेदार, जो मसालेदार
1: मसालेदार
0: वगैरह,
1: चीज़ें हो गई,
0: जी,
1: ये जो ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं, या
0: जिसमें तेल का।
1: लो रेजिडुअल डाइट जो है, जो रेडीमेड चीज़ें हैं, जे जिनका फीकल मैटर कम बनता है, जा कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहना लोगों को, और कॉन्स्टिपेशन इन इन चीज़ों का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग कम रेजिडुअल डाइट खाते हैं तो वो सारी की सारी अब्जॉर्ब हो जाती है, फीकल मैटर कम बनता है, कॉन्स्टिपेशन बनती है। रूटीन में लोग 3-4 दिन के बाद लेटन जाते हैं, तो कब्जी जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है,
0: यानी वो
1: इसका
0: इसकी,
1: सबसे बड़ा कारण
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: और उसके बाद लाइफस्टाइल जो है हमारा, सेडेंटरी हैबिट्स, चलना फिरना आजकल बहुत कम हो गया है, डेस्क लाइफ जो है ये ज़्यादा है, बैठे
0: जी
1: रहना हर वक्त,
0: जी जी
1: जो दुकानदार लोग हैं वो तो जिन सारा दिन बैठे रहते हैं, फिर कुछ जे जो बॉडी वेट है,
0: जी
1: जो
0: वो जब
1: लोग, हाँ,
0: ज्यादा,
1: मोटापापन जो है,
0: जी,
1: और एवरेज आजकल लोग जो है उनमें मोटापा ज़्यादा आ रहा है, जो लीन एंड थिन बॉडी स्ट्रक्चर है वो
0: उसका
1: बहुत
0: कारण कि
1: कम लोग,
0: जिस्मानी वर्जिश नहीं होती है,
1: हाँ,
0: तो जाहिर है
1: जिस्मानी वर्जन,
0: कि इस तरह
1: हाँ,
0: की
1: वही
0: बीमारी।
1: कारण है।
0: जी
1: तो बच्चों में आमतौर पर ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है। मर्दों और औरतों में 30 साल से ऊपर की उम्र में अमूमन ये लोगों में पाई जाती है बीमारी, और इसकी प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा है कि आज 70-80% लोग जो हैं वो बवासीर के शिकार हैं।
0: डॉक्टर साहब मैं हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन बातचीत, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हाँ, मेरी पसंद का दूसरा गाना है शोर फिल्म से, एक प्यार का नगमा है। हाँ,
0: शोर फिल्म से,
1: शोर,
0: मनोज कुमार
1: मनोज
0: साहब की
1: कुमार
0: फिल्म
1: साहब
0: रही है। जी, अपने
1: की
0: जमाने की बड़ी
1: फिल्म,
0: मकबूल फिल्म रही
1: हाँ,
0: है।
1: जया बहादुरी और मनोज कुमार की
0: जी
1: फिल्म थी वो,
0: बिल्कुल, अब
1: जया
0: तो वो जया बच्चन है, तब तो जया बहादुरी थी। बिल्कुल सही
1: बहादुरी
0: कहा आपने, आपकी पसंद का ये गीत हाजिर है।

0: जी डॉक्टर सुरेश, हम आपसे बात कर रहे थे पाइरेट्स के बारे में। तो ये आपने ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि खाने पीने की चीजों में थोड़ी सी हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं, जिस वजह से ये पाइरेट्स या बवासीर की बीमारी पाई जाती है। यही कारण है, मेन कारण यही है।
1: बाकी एक दो कारण और भी हैं, जे हेरिडिटरी भी है, जिसको हम अनुवंशिक कहते हैं, पारिवारिक भी है। जे कुछ लोगों में जे फैमिली में भी जे बीमारी होती
0: यानी
1: है।
0: अगर हमारे किसी
1: किसी के पिता को, किसी के
0: तो
1: दादा
0: उसके
1: को,
0: बच्चे को भी।
1: बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं, पर वो उसका अनुपात बड़ा कम है।
0: जी,
1: पर जे अभी कुछ केसेस हम देखते हैं जिनमें हेरिडिटरी भी है जे।
0: जी। तो इसका इलाज आयुर्वेद में कैसे किया जाता है?
1: आयुर्वेद में दो प्रकार का इलाज है, अर्श का, और वो इलाज इसके प्रकार पर निर्भर करता है। क्योंकि अर्श दो प्रकार की होती है, एक शुष्क है, एक बादी है। एक में सिर्फ मस्से बनते हैं और एक में खून आना शुरू हो जाता है।
0: इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती
1: हाँ,
0: है।
1: ब्लीडिंग। तो जैसा बीमारी,
0: ये जो ब्लीडिंग आती है ये किस स्टेज में आती है?
1: हाँ, ये जो ब्लीडिंग की बीमारी है, ये खासकर इसकी फोर्थ स्टेज होती है अर्श की।
0: जी,
1: जो पहली और दूसरी स्टेज है उसमें ब्लीडिंग कम होती है, जो तीसरी स्टेज है उसमें भी ब्लीडिंग कम होती है, और जो फोर्थ स्टेज है उसमें ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसकी स्टेजेस जो हैं, जो इसके प्रकार हैं बीमारी के, उसके आधार पर ही इसका इलाज है। जो पहले और दूसरे प्रकार की अर्श है उसमें औषधियों से इसका इलाज हो जाता है।
0: जी,
1: और उन इलाज में अगर हम इसकी कब्ज पर कंट्रोल कर लें, कब्ज ठीक हो जाए, खाने पीने का थोड़ा सुधार कर लें, हमारा आहार विहार अच्छा हो जाए, जिसमें सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें हम, फ्राइड चीज़ें होगी, लो रेजिडुअल डाइट है, इसका परहेज़ करना शुरू कर दें, तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री की जो पाइल्स है, अर्श है, वो दवाइयों से ठीक हो जाता है। जब पाइल्स के मस्से जो हैं वो शरीर हमारे एनस से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और एक स्टेज में वो बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, और जो फोर्थ स्टेज होती है उसमें वो परमानेंटली बाहर ही रहते हैं मस्से बने हुए। तो उस स्टेज में इसका जो शल्य चिकित्सा है वही इलाज होता है। और
0: एक में इसमें हमने बवासीर में आयुर्वेद में हमने सुना है शार सूत्र होता है। ये शार सूत्र क्या है? ये भी एक, इसको हम यूं कहें कि ये सर्जिकल एक तरीका है।
1: बिल्कुल सही सुना आपने। जो क्षार सूत्र है आयुर्वेद में, ये अर्श को, जो चौथी डिग्री अर्श है उसको, हाँ, उसको ठीक करने का एक शल्य कर्म है
0: जी।
1: और ये शल्य कर्म जो है इससे बवासीर जो है ये समूल नष्ट हो जाती है। इसका, जिसको हम कहते हैं रेडिकल क्योर है, पूरा पूरा इलाज है शल्य कर्म, जो आयुर्वेद का क्षार सूत्र है इसमें। तो क्षार सूत्र के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं, तो क्षार सूत्र एक धागा होता है जिसको हम मेडिकेटेड थ्रेड कह लें, जो चार औषधियों से तैयार किया जाता है। इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं उस मस्से पर, वो उसका एक, उसकी गांठ लगाने का एक स्पेशल तरीका होता है। वो गांठ जब लगाई जाती है तो उसके बाद मस्सा जो है वो आस्ता आस्ता खुद ब खुद सिकुड़ कर गिर जाता है
0: जी।
1: और फिर वो दोबारा, अगर हम परहेज रखें, परहेज मतलब आहार विहार अच्छा रहे हमारा, कब्ज ना होने पाए, शरीर का वजन कम रहे, बैठने की जो हमारी रूटीन है ज़्यादा देर तक काम करने की, अगर उस पर अंकुश रहे, तो फिर बवासीर होने के आसार खत्म हो जाते हैं।
0: डॉक्टर सुरेश शर्मा, मेडिकल ऑफिसर आईएसएम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमने बात की पाइल्स पर और इसके अलावा आयुर्वेद की जानकारी आपने हमें दी। हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत ही विशाल है, इस पर बहुत बातचीत हो सकती है, लेकिन समय की कमी हमारे पास है। आपसे हम इजाजत चाहेंगे, आप चलते चलते अपनी पसंद का एक गीत बताइए जो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे।
1: मेरे पसंद का तीसरा गाना गजल के रूप में है, होंठों को छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे
0: जगजीत सिंह की आवाज में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद का गीत हाजिर है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: अपना समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे मेडिकल ऑफिसर आईएसएम हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुरेश शर्मा से की गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था आयुर्वेद, बवासीर, कारण और उपचार। आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहे।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: होगा उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 9.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारे जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हमने सर पे

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

क्या आप जानते हैं रेडियो सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि रेडियो सुनते समय हम कोई भी काम कर सकते हैं, और हमें रेडियो से कई बार ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारा जीवन भी बदल सकती है। तो सुनते रहें रेडियो वितस्ता 90.0 FM, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

दोस्तों बोजान एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: पेश है प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2, कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
2: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैनावारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

0: सहूं मैं, कुदरत की तराशी हुई गजल हूँ मैं, कुदरत की तराशी हुई गजल हूँ।
1: जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16, शीर्षक है वफा। एडिट किया भारत सपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।
2: वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक जज्बा है जिसे निभाने वाले कम होते हैं और आजमाने वाले हजार। कभी ये मोहब्बत का रूप लेती है, कभी जुदाई का दुख। आज पहलू और गीत में चलिए महसूस करते हैं वफा के हर पहलू को। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मोहब्बत सिर्फ कहना नहीं, मोहब्बत तो निभाने का नाम है। वो एक वादा जो हर मोड़ पर साथ निभाए, कोई चाहे मिले या ना मिले, पर वफा अमर रह जाती है।

कुछ मोहब्बतें सिर्फ जुदाई में जीती हैं, कभी एक आंसू बनके, कभी एक कहानी बनके, पर वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस एक मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत को याद करते हैं।

कोई छोड़कर भी चला जाए तो भी वफा करने वाले वफा निभाते हैं। उनके लिए मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं, किसी की यादों में जीना भी है।

मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, ये एक रोशनी है जो दिल से दिल तक जाती है। जिसे सच में प्यार होता है वो हर मोड़ पर साथ निभाता है। जो दिल से वफा करते हैं वो फासलों से नहीं डरते। एक सच्चा आशिक सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, वो वफा का हकदार भी बनता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि

कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, कुछ प्रेम कहानियां जुदाई में लिखी जाती हैं। दूर रहकर भी एक दूसरे की यादों में जीना भी तो वफा है। कई बार दूरियां सिर्फ शारीरिक होती हैं, दिल तो एक सा धड़कते हैं। सच्चा प्यार चाहे जितना भी दूर चला जाए, वफा का एहसास जिंदा रहता है, क्योंकि मोहब्बत एक बार होती है और सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।

वफा सिर्फ उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई साथ हो। कई बार बेवफा होने वाले भी यादों में वफा छोड़ जाते हैं। जो सच्चा मोहब्बत करता है वो धोखा मिलने के बाद भी वफा करता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक इबादत होती है। वो दुख से गुजर सकता है मगर अपनी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ता। बस एक ही तमन्ना रहती है कि काश वफा का सिला भी वफा होता।

वफा सिर्फ आशिकों का सिलसिला नहीं, दोस्ती का फर्ज भी होता है। दोस्त वो जो खुद भले ही टूट जाए मगर दोस्ती का वादा न टूटे।

वफा सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार भी एक तरह की वफा होती है। किसी की एक आहट पर जीना, किसी की एक मुस्कुराहट के लिए साल गुजार देना, कभी वक्त गुजर जाता है मगर इंतजार खत्म नहीं होता। वो जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता, किसी के लौट आने का भी होता है।

वफा सिर्फ दुख का सबब नहीं, एक सुकून भी है। जब कोई दिल से मोहब्बत करता है तो उसके साथ एक अजब सी तसली होती है। कोई चाहे मिले या ना मिले, मगर वफा का एहसास दिल को सुकून दे जाता है। वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस मोहब्बत को इबादत की तरह निभाते हैं। मोहब्बत जब सच्ची हो तो वफा दुख नहीं देती, सिर्फ एक गहरा सुकून देती है, क्योंकि प्यार की असली जीत मिलने में नहीं, वफा निभाने में होती है।

ये था पहलू और गीत वफा के नाम। फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ और एक नए गीत के साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किरणी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16, शीर्षक था वफा। एडिट रिकॉर्ड किया भारत सपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान व निया जैन का। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ। ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम पेश है। मुझे तू दर्द दे ऐसा जो तुझे भी मिल गया हो, मुझे तू फूल दे ऐसा जो मुरझा के खिल गया हो, मुझे तू दिल भी दे ऐसा जो अब तक सिल गया हो। मैं हूं रमेश।

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्हें ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने ये भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसलिए एक सन्नाटा रखा है मैंने अपने आसपास।

अभी तक मुझको वो कहां भूले हैं। हम तो झूले हैं कितनी बहारों में, चिनारों में, सितारों में, जब कभी सफर होता था हमारा, और अपनी अपनी पसंद का तोड़ लेती थी सितारा। अभी तक गुलाबों के पत्ते हैं किताबों में, एक राज की तरह है तू मेरे हमराजों में।

वो दिन कहां गई वो रातें, प्यार भरे नगमे, मासूमियत की बातें। सब कुछ बदल बदल सा गया है, मगर मेरा तसव्वुर, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात खामोश तनहा ठहराव लिए। इन फिजाओं में तेरा मेरी राहों का तकना फिर से मजबूर करता है जीने को। आखिर क्यों? इसलिए शायद कि हम और गम के तूफान में बह जाएं।

0: घुट घुट कर दम तोड़ दे।
1: बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा के।

एक फासला है, किनारे से किनारे तक, नजर से नजर तक, सांस से सांस तक। एक सफर है आवाज से आवाज तक, खाक से खाक तक, मौत से मौत तक। ए दोस्त, ये फासले, ये शर्तें, ये सफर रहने दो।

तेरा, मगर तूफान में चिराग रोशन कैसे हो? अंधेरों से रोशनी की उम्मीद, आखिर जिंदगी का हासिल क्या है? कुछ भी तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, इसलिए तू

रिश्तों की बातें झूठी हैं, ये दो पल का जीवन, इसमें बिछड़ना एक हकीकत है, मिलना तो सिर्फ बहाना है। अंधेरे से मायूस ना हो, ये सफर है सूरज का, जिसमें ढल जाना एक हकीकत है, चढ़ना तो सिर्फ बहाना है।

जय श्रोता, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:50। आज की ये बातचीत भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। उम्मीद है इन लम्हों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके दिन को थोड़ा और सार्थक बनाया होगा। दोस्तों, हम हर दिन किसी खास विषय पर बात करते हैं। जाने से पहले आज बात करते हैं एक बेहद उत्साहजनक विषय। विषय है बदलाव को अपनाना ही नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। जीवन में परिवर्तन हमेशा अपने साथ कुछ नया और रोमांचक लेकर आता है। जो व्यक्ति खुले दिल से नए भावनाओं, नई तकनीक और नई परिस्थितियों का स्वागत करता है, वो लगातार सीखता रहता है, बढ़ता रहता है और जीवन को नए नजरिए से देखने में सक्षम होता है। हर बदलाव अपने भीतर एक नया अवसर, एक नई सीख और एक नई शुरुआत समेटे होता है। जो लोग बदलाव का सकारात्मक रूप से अपनाते हैं, वो अपने जीवन में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखते हैं। नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते, नई जगहें, नए हुनर, ये सब हमें और समृद्ध बनाते हैं, हमारे अनुभव के दायरे को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति हर नए पड़ाव को उत्साह के साथ स्वीकार करता है, वो जीवन की यात्रा को कहीं अधिक रोमांचक और सार्थक बना लेता है। बदलाव डरावना नहीं, बल्कि ये विकास और प्रगति का सबसे सुंदर रास्ता है। दोस्तों, आइए हम सब हर नए बदलाव का स्वागत उत्साह और जिज्ञासा के साथ करें, क्योंकि जो समय के साथ नई चीजें अपनाना सीख लेता है, उसके लिए जीवन में हमेशा नए रंग और नई खुशियां खुली रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय और आशा करता हूं कि इससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। हर दिन आपके लिए 4 पंक्तियां लाता हूं। आज आप सभी और मेरे दोस्तों के लिए आज की ये पंक्तियां आप सभी के नाम। आज की पंक्तियां है, जो अपनाए बदलाव को हिम्मत और सब्र से, जो अपनाए बदलाव को हिम्मत और सब्र से, वही गढ़ता है अपनी तकदीर नए हुनर से। वितस्ता भी तो हर मौसम में खुद को ढालती है, यही सिखाती है नयापन अपनाओ खुले मन से, यही सिखाती है नयापन अपने अपनाओ खुले मन से। जी हां दोस्तों, ये थे आज की पंक्तियां। और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 13 अक्टूबर 2026 मंगलवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं, वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 7:05 पर सुनेंगे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 5। हमारे साथ होंगी दीप्ति बाला शर्मा, पेश करेंगे आरजे सेजल। 8:30 पॉजिटिव स्टोरीज का समय होता है, सकारात्मक कहानियों का समय होता है। कल एपिसोड 11 होगा अपने संस्कार, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 होगा कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड 2, पेश करेंगे नैना। और 10:00 होगा गुप्तगु कार्यक्रम एपिसोड 5, हमारे साथ होंगी नीरजा पंडित, बॉलीवुड सिंगर और फोक सिंगर। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6:00 आप सुनेंगे भक्ति संगीत, 6:30 श्याम गजल और 7:00 सुनहरे पल एपिसोड 1। ये कार्यक्रम किशोर कुमार पर तैयार किया गया है, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मरहटा। कल की कड़ी है, तुम भी कुछ बात करो। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएंगे और अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपके मन में बदलाव को अपनाने की एक नई सोच जगा गई होगी। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए
इजाजत लेता हूं आपसे आज्ञा। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।